आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि। तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीदार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। सुकरात का ये कथन है कि संसार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त करे। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 220। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदा के निजोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 सुनिए त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और दिन में 3:00 का समय है सखी सहेली इस कार्यक्रम का। शाम 4:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा इसके अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा जीवन शैली और योग इस विषय पर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7:00 सुनिए कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। रात 8:00 कार्यक्रम हवा महल झलकी नीम हकीम इसके लेखक हैं राजकुमार वाल्टर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15

15 मिनट का कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10 बजे का समय छाया गीत कार्यक्रम का है और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विफल हो भरत जो और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: कल हमने लोक संगीत में प्रचलित विभिन्न सारंगियों की बात की थी। आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारी मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। गज से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक अचल थाट में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वरों में मिलाया जाता है। गायन में सारंगी की संगत से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भरावट व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके आविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मियां कल्लू खान, हकीम बकरात गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसीलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न भिन्न नामों से किया है किंतु विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में प्रचारित हो चुकी थी। संगीत राज ग्रंथ के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। यही कारण है कि आईने अकबरी और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग किरवानी सुनते हैं। कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खान।

अब हम सारंगी के आकार पर विचार करेंगे। सारंगी की लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके नीचे वाले भाग को मंधान कहते हैं, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। घुरच अर्थात ब्रीच की व्यवस्था इसी मंधान में की जाती है। मध्य भाग को छाती अथवा गला कहते हैं। छाती की बाईं ओर 24 छोटी छोटी खुटियां तरबों के लिए लगाई जाती है। सबसे ऊपर वाले भाग को मगज कहते हैं, जिसमें दाएं बाएं मुख्य तार हेतु 2-2 बड़ी खुटियां और 11 तरबों हेतु छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 तार और 35 तरबों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य 4 तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम तात का तार मध्य सप्तक षड् स्वर में, दूसरा तात का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा तात का तार मंद्र सप्तक के षड् स्वर में और चौथा तार फौलाद का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों से तार को दबाया जाता है, जबकि सारंगी में स्वर निकालने हेतु अंगुलियों के नाखून का स्पर्श या घर्षण किया जाता है। भारतीय संगीत की सूत, घसीट, गमक, कर्ण, खटका, मुरकी आदि विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी

सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रसास्वादन करते हैं।

गजतत्वाद्य। गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारूबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्ड

मधुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये दिल लगी फिल्म का गाना सुरैया और श्याम की आवाजों में, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद अली का। आज अभिनेत्री और गायिका सुरैया को उनके जन्मदिवस पर हम याद कर रहे हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गाना सुरैया की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल, संगीत नौशाद का। अगला जो गीत है ये बड़ी बहन फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत हुस्नलाल भगतराम का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ श्याम सुंदर का संगीत पते किया ये गाना सुरैया की आवाज में, फिल्म का नाम चार दिन।

अंतराल का समय पूरा हो चुका है, हम हाजिर हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। दास्तान फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, संगीत नौशाद का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों ना करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

लीजिए, अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत इस फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है हुस्नलाल भगतराम का।

0: ये आवाज़ें थी सुरैया और तलत महमूद की, शब्दकार मिर्ज़ा गालिब, संगीत गुलाम मोहम्मद का, फिल्म मिर्ज़ा गालिब।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में, अब आपको सुनवाते हैं चांद और सूरज। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत सलील चौधरी का।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं, ये फिल्म का नाम है। मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत है खय्याम का।
1: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अंतराल के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में मेरे सनम इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नैयर ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अगला गाना आपको सुनवाते हैं वक्त फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

वक्त फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, सहेल लुधियानवी के बोल, संगीत रवि का। इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आप हिंदी में समाचार।

0: सब्जियों के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और

0: प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है।

0: रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता, ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 102.1 MHz पर आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटिव चैनल है। इस समय सवेरे के 8:00

15 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत आइए करते हैं टू स्टेट्स फिल्म की इस गीत के साथ।

फिल्म संगीत में आइए, अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म से इस गीत को आवाजें दी है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने। वहीं इस गीत के बोल लिखे हैं

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत लीजिए सुनिए, हीरो पंती। इस फिल्म से इस गीत को आवाज दी है मोहित चौहान ने, वहीं इस गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

हीरोपंती फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय

0: नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और मैं हूँ आज की आपकी होस्ट मनीषा और मेरे साथ हैं
1: मैं हूँ सूफिया खान। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आपका आप ही के अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
0: दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। इसके साथ ही रखेंगे आपको अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है।
1: तो श्रोताओं, एचपीडी पर हैं चंद्रा राम पटेल और फारूक अहमद शेख।
0: एफएम ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं सीएल सोनी।
1: कंट्रोल रूम से प्रवीण कुमार।
0: कंसोल पर हमारे साथ हैं शैला महेश्वरी।
1: और एफएम चैनल पर है श्रोताओं कविता सांखला। नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने और इन सभी के साथ मैं सोफिया खान।
0: और दोस्तों, मैं आपकी होस्ट मनीषा। और दोस्तों, कहते हैं ना कि बोलने से कठिन होता है सुनना और सुनने से कठिन होता है सहना, क्योंकि हर शब्द मन को छू जाता है, लेकिन सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। जो ये कला सीख लेता है वही जीवन में सच्ची शांति पा लेता है।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिक तब लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

जी दोस्तों, बिल्कुल ये गीत एक संदेश देता है कि चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए जीवन में, लेकिन हमें अपने काम पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होना चाहिए और हमें उसी पर निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और इसी से संबंधित मुझे एक कहानी याद आ रही है दोस्तों। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गाँव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन कई वर्षों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। तो गांव के लोग स्वाभाविक है उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन इससे फायदा क्या, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन मोहन बहुत समझदार था, उसने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन खेत में काम करता और नई नई बातें सीखता और अपनी गलतियों को सुधारता। फिर दोस्तों, ऐसा हुआ कि एक साल भयंकर सूखा पड़ गया। कई किसानों ने अपनी खेती ही छोड़ दी, लेकिन मोहन ने क्या किया जरूर बताएंगे आपको, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जी दोस्तों, हम आपको कहानी बता रहे थे, मेहनत थी मोहन की। हुआ ये था कि भयंकर सूखा पड़ गया था, तो कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, लेकिन मोहन ने अपने खेत में पानी बचाने के नए नए तरीके अपनाए। उसने अपनी मेहनत को जारी रखा और अगले वर्ष अच्छी बारिश हुई।

0: तो जो लोग अपनी खेती छोड़ चुके थे उनके लिए तो एक सबक ही था कि मोहन ने हार नहीं मानी थी और मोहन का खेत हरी भरी फसलों से लहलहा उठा। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, एक युवक ने मोहन से पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो मोहन ने मुस्कुराकर बोला, मैंने कभी केवल किस्मत पर भरोसा नहीं किया, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। जब लोग हार मान रहे थे तब भी मैं सीखता और प्रयास करता रहा और फिर लोगों को, गांव वालों को समझ आ गया कि सफलता अचानक नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि लगातार मेहनत, धैर्य और विश्वास से मिलती है।
1: बिल्कुल, इस कहानी से ये सीख मिलती है श्रोताओं कि मेहनत और धैर्य का जो फल है वो देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते वो होते हैं अंत में सफल।

0: मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।
1: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचरण जीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक का हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बिल्कुल श्रोताओं, इस गाने के पहले हमने बात की थी कठिन परिश्रम पर। बिल्कुल, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता श्रोताओं, क्योंकि सफलता का रास्ता जो है वो इसी से होकर जाता है। अगर कुछ पाना है हमें तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता जो है वो जल्दी मिलेगी। इसीलिए कल को अगर आसान बनाना है तो आज के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इंसान को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कितनी गलती कर रहा है या वो कितना धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो उन सभी लोगों से बहुत आगे है जो कि कोशिश ही नहीं करते। और दोस्तों, ये देखा भी गया है कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और बस आगे बढ़ते रहिए।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स और एफएम एंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा।

0: समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। होर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके। बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन शीमार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा, ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और

0: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मानसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
1: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलादी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आमजन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने, और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जी दोस्तों, न्यूज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, मैं हूं आपकी आज की होस्ट मनीषा और मेरे साथ में है
1: मैं हूं सूफिया खान। श्रोताओं, कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा लेकिन इस गीत के बाद।

ये दोस्तों इस गीत के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इतिहास में क्या दर्ज है। दोस्तों 2005 में आज ही के दिन जमैका के आसफा पावल ने

0: एथेंस में 8.77 सेकंड का समय लेकर 100 मीटर फर्राटा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। 2008 में आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी थी।
1: और इसी के साथ बढ़ते हैं खेल खबरों की ओर। तो श्रोताओं, तीरंदाजी विश्व कप की बात करें तो भारत के धीरज मोमा देवरा और कुमकुम मोहोद ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रविवार को यानी कल तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर मिश्रित टीम का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ बात करें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की, तो महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान की टीम को 64 रन से करारी शिकस्त दी। स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट ले लिए हैं और ये जो जीत है वो बेहद ही शानदार रही। और इसी के साथ अब भारतीय टीम जो है वो 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगी।

दोस्तों, बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान और मेहनत से परिवार और समाज को मजबूत बनाया है। उनके आशीर्वाद

0: आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमें सही दिशा मिली है और इसीलिए उनकी सेवा करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। दोस्तों, बुजुर्गों की सेवा केवल उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं बल्कि उनका सम्मान करना भी होता है। उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें प्रेम देना भी होता है। बढ़ती उम्र के साथ उन्हें सहारे, देखभाल और अपनत्व की आवश्यकता होती है और यदि हम उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें तो वे स्वयं को सम्मानित और खुश महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कि आज के समाज में कई बार वृद्धजनों के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं, उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई जाती है, उनकी धन या संपत्ति या पेंशन का अनुचित प्रयोग किया जाता है, उनकी भोजन, दवा या चिकित्सा की देखभाल में उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है और कई बार उन्हें परिवार और समाज से अलग थलग भी कर दिया जाता है। तो ये जो समस्या दिखाई देती है, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस आज के दिन यानी कि 15 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिवस इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव और शोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना। बढ़ती उम्र के साथ में कई वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना समाज की जिम्मेदारी हो जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के दिन विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसके इतिहास की अगर बात करें तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल का समर्थन किया और इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी और तभी से दुनिया के अनेक देशों में ये दिवस मनाया जाता है।
1: और इस दिवस के महत्व पर और ध्यान दें तो श्रोताओं, बुजुर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, परिवारों को बुजुर्गों के देखभाल के लिए प्रेरित करना और जो वृद्ध दुर्व्यवहार है उन घटनाओं को कम करना भी शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाना भी दिवस विशेष को खास बनाता है। और हम क्या कर सकते हैं इस दिन? तो श्रोताओं, बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, उनकी बात जो है वो ध्यान से सुन सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें परिवार और समाज की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। उनके साथ धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। यदि किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनकी सहायता भी जरूर करें।
0: दोस्तों, देखा गया है कि आज के व्यस्त जीवन में कई बार लोग बुजुर्गों की उपेक्षा कर देते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने बचपन में हमारी देखभाल की, उसी प्रकार वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बुजुर्गों की सेवा से परिवार में प्रेम, संस्कार और आपसी सम्मान की भावना बढ़ती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदैव अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उन्हें अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग बनाइए। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी संस्कृति और मानवता की पहचान भी है। दोस्तों, इसीलिए आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमें एक ही दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर हमें अपने बुजुर्गों की पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनकी तरफ पूरी जागरूक रहना चाहिए और उनका स्वास्थ्य पर, उनके देखभाल पर हमें अपना ध्यान देना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो कि वे समाज से अलग थलग हैं।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे

0: हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक पे? अरे वाह!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जी दोस्तों, अभी अभी हमने आपसे बात की विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में। और दोस्तों, इसी तरह हमारे सरकार के द्वारा भी वृद्धजनों के लिए उनको ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चलाई जाती है समय समय पर। और इसी तरह की एक योजना हम आपके लिए लाए हैं आज की काम की बात में। दोस्तों, सरकार के द्वारा राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलाई जाती है। और इसमें सरकार के द्वारा देवस्थान विभाग के माध्यम से संचालित वरिष्ठ नागरिक ये जो तीर्थ यात्रा योजना है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान किया जाए। इस योजना के अंतर्गत चयनित वरिष्ठ नागरिकों को भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में और कुछ विशेष तीर्थों की यात्रा भी सरकार के खर्चे पर कराई जाती है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को ये जो निःशुल्क यात्रा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी इसका एक उद्देश्य है। आर्थिक रूप से जो कमजोर बुजुर्ग हैं, उन्हें तीर्थ दर्शन का अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसकी पात्रता की बात करें तो दोस्तों, आवेदक जो है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये इस योजना की पहली शर्त है। और इसकी जो आयु रखी गई है वो सामान्यतः 60 वर्ष या उससे ऊपर अधिक रखी गई है। इसके साथ ही निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों का पूरा होना आवश्यक है। और इस ये जो यात्रा करवाई जाती है सरकार के द्वारा, इसके अंतर्गत विशेष रेलगाड़ियों से और हवाई मार्गों से भी यात्रा कराई जाती है। और हाल ही के वर्षों में लगभग 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल के द्वारा और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसमें जो मुख्य तीर्थ स्थल रखे गए हैं उनमें वैष्णो देवी, अमृतसर, गोंडल टेम्पल, रामेश्वरम
1: और द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, प्रयागराज, कामाख्या टेम्पल और पाशुपतिनाथ टेम्पल जो है उनसे विशेष हवाई यात्रा प्रस्तावित है। और आवेदन प्रक्रिया की बात करें श्रोताओं, तो देवस्थान विभाग की वेबसाइट या ई मित्र के माध्यम से ये आवेदन किए जाते हैं। और इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं वो अपलोड करने होते हैं और फिर चयन प्रक्रिया की जाती है और चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाती है। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर जो है वो चाहिए होते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको आवास व्यवस्था और निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं सम्मिलित हैं।
0: जी दोस्तों, वृद्धजनों की ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी एक सरकार की अच्छी पहल है और इससे हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना चाहिए। कम या बहुत ही कहते हैं कि कम खर्चे पर इसमें, या कहें कि ना के बराबर खर्चे में आप अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवा सकते हैं। इससे अच्छा सुनहरा अवसर क्या होगा। और ये जो यात्राएँ हैं ये साल में एक बार तो होती हैं, कभी कभी ये दो बार भी करवा दी जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए और ई मित्र पर जाकर आप अपडेट रहिए, पेपर में भी इसकी सूचना आती है समाचार पत्रों में। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप अपने वृद्धजनों को, अपने घर के, अपने माता पिता को आप आराम से निःशुल्क यात्रा करवा सकते हैं तीर्थों की। तो ये काम की बात आपके लिए उपयोगी रही होगी, हम ऐसी आशा करते हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
3: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: श्रोताओ, आज 15 जून है और हर साल जो है 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि पवन ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता जो है उसको बढ़ाना। पहला पवन दिवस जो है वो 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। साल 2009 में इसी EWEA और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सहयोग से ये एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया और इसके बाद से ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाने लगा। श्रोताओं, पवन ऊर्जा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके इस्तेमाल से कोई भी हानिकारक गैसें नहीं निकलती और ये जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करती है। ये ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और किफायती माध्यम बनता जा रहा है जिससे रोजगार का भी सृजन होता है और स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।
1: आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रही है और हम बिजली बनाने के लिए सालों से कोयले और डीजल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिसने हमारी धरती की हवा को जहरीला बना दिया है। ऐसे में पवन ऊर्जा हमारे सामने वरदान बनकर आई है और आज दुनिया भर में विंड टर्बाइंस लगाए जा रहे हैं और भारत भी इसी दौड़ में पीछे नहीं है। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में फैले विशाल विंड फार्म इस बात का सबूत हैं कि हम एक स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

0: श्रोताओं, रात के समय जब खुले आसमान को देखते हैं तो दिखते हैं बहुत सारे तारे, और उन्हीं तारों के बीच दिखती है सफ़ेद धुएं जैसे एक चमकती हुई मेखला के समान, जिसे हम कहते हैं आकाश गंगा। बिल्कुल, आज विज्ञान विश्व हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारी आकाश गंगा के बारे में। और श्रोताओं, इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है। ये सिर्फ तारों का झुंड नहीं होता, बल्कि ये हमारा वो ब्रह्मांड ये पता है जिसके एक छोटे से कोने में हमारी नन्ही सी पृथ्वी चक्कर काट रही है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में ही नहीं है, बल्कि इसके बाहरी किनारों पर मौजूद ओरियन आर्म नाम के एक सर्पित भुजा में स्थित है। और इस विशालकाय आकाशगंगाओं की तरह इसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सजिटेरियस ए भी कहा जाता है।
1: दोस्तों, हमारा पूरा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, और सूर्य को इस केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आकाशगंगा की सबसे करीब बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, और इस आकाशगंगा का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। यानी कि इसका मतलब है कि प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 वर्ष का टाइम लगता है। खैर, हम इसके बाद यहीं तक सीमित रखेंगे, आपको ले चलेंगे गीतों की दुनिया में। सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात जयंती विशेष की, तो आज भारतीय थल सेना के पहले थल सेना अध्यक्ष और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बाद द्वितीय भारतीय थे ये। बात कर रहे हैं हम राजेंद्र सिंह जी जडेजा की, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और भारतीय थल सेना प्रमुख बने। आज ही के दिन 15 जून 1899 को जन्मे राजेंद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल के दौरान विश्व युद्ध में विदेशों में जाकर शांति मोर्चा भी संभाला था।
1: दोस्तों, आज जयंती है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार 1917 में जन्मे सज्जाद हुसैन साहब की, जिन्होंने वीणा, वायलिन, बांसुरी, पियानो सभी में किशोरावस्था में ही माहिर हासिल कर ली थी। दोस्तों, 1937 में उन्होंने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने जिन फिल्मों में संगीत दिया उनमें से सैयां, संगदिल, दोस्त, रूपलेखा, रुस्तम, सोहराब जैसी फिल्में हैं जिनमें उनके संगीत में फिल्मी सफर को बहुत सराहा गया, और आखिरी सज्जाद जिसमें उन्होंने संगीतकार के रूप में एक उनकी अंतिम फिल्म थी करियर की, जिसमें उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी।
0: और श्रोताओं, आज जन्मदिन मना रही है भारतीय टेबल टेनिस के बेहतरीन सितारों में से एक और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनिका बत्रा। आज उनका जन्मदिन है। 15 जून 1995 को जन्मी मनिका बत्रा ने, श्रोताओं, रियो 2016 में अपना ओलंपिक डेब्यू करने से पहले 2016 के ही दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।

0: और आज श्रोताओं हम याद कर रहे हैं उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर जी को। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में से एक थे ये और ध्रुपद गायन परंपरा के प्रमुख कलाकार थे। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन गायन शैलियों में से एक मानी जाती है श्रोताओं, और वो प्रसिद्ध डागर घराने से संबंधित थे जिन्होंने ध्रुपद संगीत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी दोस्तों, इसके साथ आज जयंती है सुरैया जी की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं और गायिका भी रहीं। दोस्तों, उस समय में वे अपने फिल्मों के गीत स्वयं गाती थी जो कि उनकी विशेष पहचान थी। उन्होंने अपने अभिनय से लाखों दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था। आज ही के दिन 15 जून को लाहौर में जन्मी सुरैया जी ने अपनी जो सफल फिल्में दी उनमें जो प्रमुख फिल्में हैं वह हैं अनमोल घड़ी, दिल लगी, मिर्जा गालिब, शायर और अफसर। भारतीय सिनेमा की पहली बड़ी सिंगिंग स्टार के रूप में जाने जाने वाली सुरैया जी ने अपने अभिनय और गायन से एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिल्म जगत में, हिंदी फिल्म जगत में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आइए सुनवाते हैं उन्हीं की पिक्चर से ये।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिंदगी जंक्शन।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरा मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: 101.1 FM Sun City सुन रहे श्रोताओं, आप प्रोग्राम है जिंदगी जंक्शन। मैं हूँ सोफिया खान।
1: और मैं हूँ मनीषा।
0: और कंसोल पर है हमारे साथ कविता सांखला।

बिल्कुल श्रोताओं, 102.1 FM सन सिटी सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है जिंदगी जंक्शन और आज बात उस पर जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो अनमोल एहसास जिसके बिना शायद सभी अधूरे हैं। ये अगर हो तो लगता है जैसे कर लेंगे कोई भी काम या हो जाएगा सब कुछ ठीक। बिल्कुल आज बात उस पर जो जीवन में बेहद ही अहम है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं भरोसे की। भरोसा यानी यकीन यानी ट्रस्ट।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्वास की। विश्वास मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से है। ये हमें एक ऐसा आधार है जिस पर व्यक्ति के संबंध, उसके कार्य, उसकी सफलता और उसके व्यक्तित्व का निर्माण छिपा रहता है। विश्वास के बिना ना तो परिवार मजबूत रह सकता है और ना ही समाज और ना ही कोई राष्ट्र। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि हमें कितनी भी क्षमताएं हों, लेकिन हमें उन अपनी क्षमताओं पर अगर विश्वास नहीं होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी ही विश्वास है, चाहे वो खुद पर हो चाहे वो सामने वाले पर हो। और विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जिंदगी जंक्शन में, और बात कर रहे हैं हम आज यकीन यानी भरोसे पर, विश्वास पर। बिल्कुल श्रोताओं, हम हर रात इस यकीन

साथ आंखें बंद करते हैं कि कल सवेरा होगा। हम जमीन में एक बीज इस विश्वास के साथ बोते हैं कि एक दिन ये बड़ा पेड़ बनेगा। ये सब जीवन के पड़ाव में वो भरोसा है जो बिना किसी डर के चलता है। भरोसा एक ऐसा धागा है श्रोताओं, जो पूरी कायनात को आपस में जोड़े हुए हैं।

जी दोस्तों, बिल्कुल। जब हमारा खुद से भरोसा उठने लगता है या किसी से विश्वास डगमगाने लगता है, तो एक असीम शक्ति हमें याद आती है जो इस दुनिया को चला रही है। उस पर हमें विश्वास होने लगता है और उस विश्वास के बलबूते पर हम आगे बढ़ने की फिर से हिम्मत जुटाते हैं, फिर से अपने आप को इकट्ठा करते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, फिर से एक जोश और उमंग भर पाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस विश्वास के कारण। ये असीम शक्ति ही हमें एक विश्वास देती है कि नहीं, अभी जीवन लंबा है, लेकिन रुका नहीं है। हम कुछ ना कुछ करके, कुछ प्रयास करके फिर से हम आगे बढ़ सकते हैं, उठकर खड़े हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विश्वास ही है जो सारे जीवन को, सारी दुनिया को एक सूत्र में पिरो कर रखा हुआ है और एक आगे बढ़ने की उम्मीद दे रहा है, उसे निरंतर चला रहा है।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: जी दोस्तों, दोस्त जो होते हैं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में, लेकिन जो दोस्त होते हैं वे किसका आधार होते हैं? वे भी विश्वास का आधार होते हैं। जो हमारे बीच में दोस्ती होती है वो विश्वास पे ही टिकी होती है। एक विश्वास ही होता है जो हमें हमारे दोस्त बनाने में और उन्हें दोस्ती कायम रखने में महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कहते भी है ना कि दोस्तों के बिना ये जीवन अधूरा है, तो जीवन अधूरा है दोस्तों के बिना। और दोस्त किससे जुड़े होते हैं? विश्वास से। यही धागा होता है जो हमें एक दूसरे से जुड़े रखता है और हमारा जीवन ऐसे ही खुशनुमा, खुशहाल बन जाता है, दोस्ती की बदौलत, विश्वास की बदौलत।

दोस्तों, भरोसे के हिस्से की बात करें तो यानी जीवन में भरोसा, यानी वो यकीन जो हम लोगों पर करते हैं इस जीवन में। हम इस बीच कई दोस्त बनाते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और उन पर भी तो हम भरोसा करके ही आगे बढ़ते हैं। यानी भरोसा वो चीज़ है जो अजनबियों को भी एक कर देता है।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीवन में विश्वास की। दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है

और वो चलना सीखना शुरू कर ही रहा होता है जब वो अपना पहला कदम बढ़ाता है, तो उसका विश्वास ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है कि नहीं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरे बड़े मेरे साथ हैं, अगर मैं गिरूंगा तो वे मुझे थाम लेंगे। ये विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसी तरह जब वृद्ध हो जाते हैं, जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो वे भी अगर जीवन में कठिनाई महसूस करते हैं तो वे भी अपने छोटों का साथ लेते हैं और वे उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं, अगर मैं कहीं डगमगाऊंगा तो ये मुझे थाम लेंगे, ये मुझे संभालेंगे। तो विश्वास हमारे जीवन की धुरी है, हमारे जीवन की आवश्यकता है। विश्वास है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, विश्वास है तो हम कुछ जीवन में अचीव कर पाएंगे।

अगर ये ना हो तो रिश्तों में दरार आ जाती है, और जब बात खुद पर भरोसे की हो यानी यकीन की हो तो हर कदम पर हमें सहारा मिलता है, हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और खुद को बदल भी सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी होते हैं। हम हर काम में बाजी मार सकते हैं, अगर खुद पर भरोसा हो तो जीत की ओर हम बढ़ सकते हैं।

दोस्तों, विश्वास की हम बात कर रहे हैं तो देखा गया है कि जब नई नवेली दुल्हन होती है वो भी एक विश्वास लेकर ही अपने ससुराल जाती है कि वहाँ के लोग भी उसे अपना लेंगे, कोई गलती होगी तो सुधार लेंगे और भरपूर प्यार देंगे। तो ये विश्वास ही होता है जो उसे अपना मायका छोड़कर ससुराल जाने के लिए प्रतिबद्ध करता है और उसे एक नई उमंग और खुशियों की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, विश्वास ही है ये नींव जो हमें निरंतर आगे बढ़ने का की हिम्मत देती है, की प्रेरणा देती है।

0: इसी के साथ श्रोताओं आज के प्रोग्राम जिंदगी जंक्शन में बस इतना ही. मुझे यानी सूफिया खान
1: और मुझे यानी कि मनीषा को दीजिए इजाजत.
0: नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिंदगी जंक्शन, आकाशवाणी जोधपुर का ही एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंडे मेलोडीज़।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा।

0: का ये पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया विराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपने कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM सन सिटी।

नमस्कार श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम मंडे मेलोडीज। और आज की मंडे मेलोडीज को लेकर हाजिर हूं मैं, कविता सांकला। स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, पुराने गाने कभी बूढ़े नहीं होते। उम्र तो हमारी बढ़ती है, लेकिन ये गीत हर बार हमें वहीं ले जाते हैं जहां हम कभी हंसते थे, कभी मुस्कुराते थे, कभी किसी का इंतजार किया करते थे। जी हाँ श्रोताओं, आज की इस महफिल में हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, बल्कि जानेंगे उन गीतों के पीछे छिपे दिलचस्प किस्से, वो कहानियां, वो घटनाएं जिनसे जन्म लिया इन अमर नगमों ने।

जी हाँ श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में संगीत का क्या महत्व है ये तो हर सिनेमा प्रेमी जानता ही है। किसी खास गीत की बात होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस गाने वाली आवाज पर जाता है, उसके बाद संगीत और फिर शब्दों पर जाता है। सिनेमा जगत में संगीतकार दो तरह से काम किया करते हैं। कई बार कुछ स्वर समूह ऐसे सज जाते हैं, यानी कोई धुन इतनी अच्छे से निकल आती है जिसे वो सहेज कर उस पर बोल लिख देते हैं, और ज्यादातर पहले शब्द या कविता सामने आती है जिसे संगीतकार धुन में परोकर गीत बना देते हैं। पर कई गीतों के पीछे बनने की कहानियां बड़ी रोचक होती है, कुछ रोचक वाकयात जुड़े होते हैं जिन्हें जाना जाए तो गीतों में रोचकता और निखर जाती है। तो आज हम उन्हीं गीतों के बारे में बात करेंगे और उनके पीछे छुपी अनकही कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं पहले इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, मंडे मेलोडीज कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातें करते हैं गीतों के पीछे की अनकही कहानियों की। तो इसी घड़ी में आइए पहली कहानी सुनाते हैं आपको। तो बात है 1960 की, फिल्म है मुगले आजम। जी हाँ, इस फिल्म के एक गाने को बनाने में निर्देशक के आसिफ ने पानी की तरह पैसा बहाया और वक्त भी। उस दौर में श्रोताओं, आज की तरह इको इफेक्ट यानी कि आवाज गूंजने की तकनीक नहीं थी, वो मशीनें नहीं थी। संगीतकार नौशाद साहब को इस गाने में एक खास गूंज चाहिए थी, क्योंकि अनारकली जो थी वो महल में गा रही थी। तो इसके लिए जो गायिका थी हमारे लता मंगेशकर, उनको स्टूडियो के बाथरूम में खड़े होकर ये गाना गवाना पड़ा, जिससे वो प्राकृतिक गूंज मिल सकी इस गाने को। साथ ही श्रोताओं, एक और दिलचस्प बात है इस गीत को लेकर। गीतकार थे शकील बदायूनी जी, और नौशाद ने इस गाने के बोलों को फाइनल करने के लिए उससे पहले 105 बार इस गीत को रिजेक्ट किया था। फिर लिखा, तो इस तरह इस गाने को लिखा गया था। साथ ही श्रोताओं, लाहौर के किले से प्रेरित होकर मुंबई के मोहन स्टूडियो में 2 साल लगाकर शीश महल का सेट तैयार किया गया। बेल्जियम से खास शीशे मंगवाए गए थे। जब शूटिंग शुरू हुई तो कैमरामैन डर गए। क्यों? क्योंकि लाइट जलते ही शीशों से इतना रिफ्लेक्शन होता था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आखिरकार शीशों पर मॉम और खास तरह का कपड़ा लगाकर लाइट्स को डिम किया गया, तब जाकर यह शूट संभव हुआ और एक गीत उभर कर हमारे सामने आया।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, किस्से कहानियों के सफर में आगे बढ़ें तो अगला गीत मैं देख पा रही हूँ 1955 में बनी फिल्म श्री 420 का। जी हाँ, मेरा जूता है जापानी। यह गीत सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि आजाद भारत की नई पहचान का प्रतीक साबित हुआ। राज कपूर इस गाने में एक फटे हाल आवारा के रूप में सड़क पर चलते हैं, जो सीधे तौर पर चार्ली चैपलिन से प्रेरित था। जूते जापानी, पतलून इंग्लिशतानी और टोपी रूसी होने के बावजूद दिल हिंदुस्तानी कहना उस समय के वैश्वीकरण और देश प्रेम की अनूठी मिसाल साबित हुआ। साथ ही श्रोताओं, इस गीत के रिलीज होने के बाद रूस में राज कपूर किसी भगवान की तरह पूजे जाने लगे। जी हाँ, जब राज कपूर रूस गए तो उन्हें किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ी। वहां के लोग उन्हें सड़कों पर देखकर अपनी कारों से उतर गए और ये गाना उनके सामने ही गुनगुनाने लग गए। साथ ही श्रोताओं, एक खास बात और है। मुकेश ने जब इस गीत को गाया तो इस गीत में राज कपूर की बॉडी लैंग्वेज को मैच करने के लिए उन्होंने कई बार रिटेक लिए थे। वो जब गाते थे तो खुद स्टूडियो में राज कपूर की तरह मटकते थे ताकि वो मस्करापन और सादगी आवाज में भी सुनाई दे।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: श्रोताओं, अगली कड़ी में हम बात करते हैं फिल्म आराधना के उस सदाबहार गीत की, जो कि एक बंगाली लोकगीत और संगीतकार SD बर्मन की सूझबूझ का परिणाम था। वो गीत था रूप तेरा मस्ताना। जी हाँ श्रोताओं, यह गाना भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहला ऐसा गीत था जिसे सिंगल टेक में शूट किया गया था। निर्देशक शक्ति सामंत नहीं चाहते थे कि नायक यानी राजेश खन्ना और नायिका यानी शर्मिला टैगोर दोनों के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री और तनाव कट्स की वजह से टूटे। साथ ही श्रोताओं, इस गीत को शूट करने में कैमरामैन की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उस समय कैमरामैन थे आलोक दास गुप्ता। उन्होंने कैमरे को एक विशाल क्रेन पर बांधा। गाने के दौरान जैसे जैसे राजेश खन्ना और शर्मिला आग के पास घूमते हैं, कैमरा भी उनके साथ 360 डिग्री घूमता रहा। पूरे गीत में कहीं कोई कट नहीं था। अगर कोई भी एक सेकंड के लिए भी अपनी जगह से हिलता तो पूरी रील, जो कि उस समय

बेहद महंगी हुआ करती थी वो बर्बाद हो जाती। शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे डर के मारे उस समय कांप रही थी कि कहीं कोई चूक न हो जाए, लेकिन उनका वह असली डर पर्दे पर लाजवाब रोमांस बनकर उभरा था। साथ ही श्रोताओं, निर्देशक शक्ति सामंता ने इस गीत को एक बहुत छोटे से सेट पर फिल्माया था। उस समय आधुनिक तकनीकों और मॉनिटर्स की कमी थी, इसलिए किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह गाना पर्दे पर इतना ज्यादा शानदार दिखेगा। इस पूरे गीत को बिना किसी कट के एक ही बार में शूट करना ताकि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री शानदार दिखाई दे, ये उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही श्रोताओं, यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके लिए किशोर कुमार को उनके करियर का पहला सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के।

कांच के कप और स्टील के चम्मच दिए। गाने के बैकग्राउंड में जो हल्की सी खनखनाहट हमें सुनाई देती है ना, वह असल में उन चम्मचों को कांच के कप पर एक खास लय में मारकर पैदा की गई थी। साथ ही गीता दत्त को इस गीत के लिए माइक के बेहद करीब आकर गाने को कहा गया था, ताकि ऐसा लगे जैसे कोई सच में कान में फुसफुसा रहा हो। सुनकर देखिए, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है?

चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं सुपरहिट फिल्म कभी कभी का टाइटल ट्रैक, कभी कभी मेरे दिल में। जी हाँ, इस गीत को बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा किस्सा है। यह खूबसूरत गीत असल में फिल्म के रिलीज होने से 14 साल पहले ही तैयार हो चुका था। जी हाँ श्रोताओं, यह इस गीत की जो धुन है, संगीतकार खयाम ने बहुत पहले बना दी थी, लेकिन कई निर्देशकों ने इसे बहुत धीमी और उदास कहकर रिजेक्ट कर दिया था। परंतु जब यह धुन यश चोपड़ा को सुनाई गई तो वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि यह गीत तो सिर्फ अमिताभ बच्चन और राखी पर ही फिल्माया जाएगा। जी श्रोताओं, इस गीत की रिकॉर्डिंग कश्मीर में हुई थी। कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में रात के समय इस गीत को शूट किया जाना था। पेड़ से गिरती हुई बर्फ के बीच अमिताभ बच्चन को शॉल ओढ़कर बैठना था। बर्फ असली थी, लेकिन हवा में तैरते हुए बर्फ के कण कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके लिए

यश चोपड़ा ने टेबल फैन मंगवाया और उसके सामने सूखी रुई के छोटे छोटे टुकड़े उड़ाए गए ताकि स्क्रीन पर ऐसा लगे जैसे हल्की बर्फबारी हो रही हो। साथ ही मुकेश जी ने जब इस गीत को रिकॉर्ड किया तो खय्याम साहब ने स्टूडियो की सारी लाइट्स बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि मुकेश जी को पूरी तरह से उस अंधेरे और उदासी के भाव में डूबकर इस गीत को गवाया जा सके।

चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे गीत की जो भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे लोकप्रिय और सदाबहार दोस्ती गीत बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे इस गीत की। इस गीत के बनने के पीछे भी श्रोताओं एक दिलचस्प किस्सा है। फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी साहब, जय यानी अमिताभ बच्चन और वीरू यानी धर्मेंद्र के बीच की अटूट दोस्ती को एक गीत के जरिए दिखाना चाहते थे। साथ ही श्रोताओं, इस गीत के बोल गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे और आनंद बख्शी साहब हमेशा आम बोलचाल की भाषा में गीत लिखने के लिए जाने जाते थे, जो कि सीधा दिल को छू जाए। आरडी बर्मन इस गीत को एक ऐसा एंथम बनाना चाहते थे जो हर दोस्त की जुबां पर चढ़ जाए। किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों का यह कॉम्बिनेशन बेजोड़ था। साथ ही श्रोताओं, इस गीत के फिल्मांकन के दौरान मोटरसाइकिल पर एक साइड कार का इस्तेमाल किया गया था और इस खास बाइक को आरडी बर्मन साहब के कहने पर डिजाइन किया गया था। इस दृश्य में अमिताभ बच्चन मोटरसाइकिल चला रहे थे और धर्मेंद्र साइड कार में बैठे थे। यह गीत हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक दृश्यों में से एक बन गया। जी हाँ श्रोताओं, इस गीत की शूटिंग के लिए जो तीन पहियों वाली मोटरसाइकिल जो कि साइड कार के साथ थी मंगवाई गई थी, वो बार बार खराब हो रही थी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जब भी उस पर बैठते तो उसका संतुलन बिगड़ जाता। गाने के एक सीन में जहां मोटरसाइकिल का साइड कार अलग हो जाता है और धर्मेंद्र अकेले पहिए पर चलते हैं, वह कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था। मैकेनिक ने उस हिस्से को इस तरह से काटा था कि एक झटके में वो अलग हो सके, लेकिन पहली बार में वो अलग ही नहीं हुआ और धर्मेंद्र साहब बाल बाल गिरते बचे। आरडी बर्मन ने इस गीत में माउथ ऑर्गन का जो पीस बजाया था उसे रिकॉर्ड करने में उन्हें पूरे 3 दिन लग गए थे, क्योंकि वे परफेक्ट नोट चाहते थे। और साथ ही श्रोताओं, इस गीत को पूरा करने में लगभग 21 दिन लग गए। 21 दिनों तक लगातार शूट किया गया था। रामनगर की पथरीली और खूबसूरत लोकेशन पर इस गीत को फिल्माया गया था। साथ ही श्रोताओं, आरडी बर्मन ने इस गीत में खास ड्रम बीट्स और गिटार का इस्तेमाल किया था जो उस समय के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय रहा था।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही आंखों के सामने पूरा दृश्य घूमने लग जाता है। दार्जिलिंग की हसीन वादियां, एक जीप में बैठे राजेश खन्ना और टॉय ट्रेन में सफर करती शर्मिला टैगोर, और फिर साथ में गूंजती है किशोर कुमार की जादुई आवाज, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गीत का सबसे बड़ा राज क्या है? जिस रोमांटिक केमिस्ट्री को देखकर करोड़ों दिल धड़क उठे थे, उस गीत की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और

शर्मिला टैगोर एक साथ मौजूद ही नहीं थे। जी हाँ, राजेश खन्ना ने दार्जिलिंग की सड़कों पर जीप चलाते हुए अपने सारे दृश्य शूट किए थे, जबकि शर्मिला टैगोर ने अपने हिस्से की शूटिंग मुंबई के स्टूडियो में की थी। जी हाँ दोस्तों, उस दौर में आज जैसी डिजिटल टेक्निक तो नहीं थी, फिल्मकारों ने रियर प्रोजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया। पहले दार्जिलिंग के दृश्य फिल्माए गए, फिर मुंबई में पर्दे पर वही दृश्य चलाकर शर्मिला टैगोर के शॉट लिए गए थे। बाद में एडिटिंग का ऐसा कमाल हुआ कि दर्शकों को लगा जैसे दोनों एक ही जगह एक ही पल में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यही तो सिनेमा का जादू है। लेकिन इस गीत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई श्रोताओं। साल 1969 में जब आराधना रिलीज हुई, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह गीत एक नए सुपरस्टार को जन्म देने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म और खासकर इस गीत ने राजेश खन्ना को रातों रात देश का पहला सुपरस्टार बना दिया था। उनकी दीवानगी इस कदर थी कि लोग उनकी तस्वीरों को चिट्ठियां लिखने लग गए और उनके नाम का जादू ऐसा चला जो शायद पहले कभी देखा नहीं गया था। यह श्रोताओं, एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन इस गीत में दिखाई गई थी, उसकी एक पुरानी बोगी को बाद में जयपुर के एक 5-स्टार होटल में रख दिया गया। यानी इस गीत की यादें आज भी अलग रूप में जिंदा है। तो चलिए सुनते हैं वह गीत जिसने एक सुपरस्टार को जन्म दिया, जिसने दार्जिलिंग की वादियों को अमर कर दिया, जिसने हर दिल को कभी न कभी यह गुनगुनाने पर मजबूर किया।

श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपको पता चले कि आपका सबसे पसंदीदा गीत फिल्म से लगभग बाहर कर दिया गया था तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अगला गीत कुछ ऐसा ही है जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में गिना जाता है।

आप जानते हैं इस गीत को पहली बार में रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन क्यों जी हाँ जब संगीतकार मदन मोहन ने इस धुन को फिल्म के निर्देशक राज खोसला को सुनाया तो उन्हें यह गीत कुछ खास नहीं लगा उन्हें यह लगा कि फिल्म वो कौन थी एक सस्पेंस थ्रिलर है और इतनी धीमी दर्द भरी धुन फिल्म की गति को रोक देगी इससे मदन मोहन साहब निराश हुए थे कहते हैं कि वे सीधे अपने मित्र और फिल्म के नायक मनोज कुमार के पास पहुंचे और उन्हें इस गीत की धुन सुनाई श्रोताओं जैसे ही मनोज कुमार साहब ने इस धुन को सुना वे उसके जादू में खो गए उन्होंने तुरंत कहा इतनी खूबसूरत धुन को फिल्म से बाहर कैसे रखा जा सकता है मनोज कुमार साहब ने राज खोसला से दोबारा इस गीत को सुनने की गुजारिश की इस बार जब निर्देशक साहब ने इस गीत को ध्यान से सुना तो वो सुनते ही रह गए और खुद मंत्रमुग्ध हो गए और ऐसा सुनने में आया श्रोताओं कि उन्हें अपनी भूल पर इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने मजाक मजाक में खुद को चप्पल से मारते हुए कहा कि मैं इतनी सुंदर धुन कैसे नहीं पहचान पाया और फिर यह गीत फिल्म में रखा गया था जी हाँ गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने ऐसे शब्द लिखे जो प्रेम की अनिश्चितता को अमर कर देते हैं शायद फिर इस जन्म में मुलाकात न हो और जब इन शब्दों को लता मंगेशकर की आवाज मिली तो एक ऐसा जादू पैदा हुआ जो 6 दशक बाद भी वैसे ही ताजा है

0: फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मंडे मेलोडीज, ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12 बजने को है, कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है। फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए जैसा कि आपको बताया मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
2: नहीं, नहीं।

0: सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं। जो आसमां इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल है, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: कौन है जो सपना

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज आनंद बख्शी के बोल संगीत सचिन देव बर्मन का

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मुक्कार।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में, समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई है विशाल ने।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस गीत है फिल्म खूबसूरत से।

सुनहरे रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

लक बाय चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है

उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारे रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर

इबारत थी आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है पसंद किया है और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं तो चलिए देखते हैं सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपके आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं तो आइए आगाज कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ जिसे लिखा है अमित खन्ना ने बप्पी लाहिड़ी का संगीत फिल्म का नाम चलते चलते

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें गवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूं और जहां तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूं। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम गणगौर।

0: देखो शीतल जी, अगर घर में दादा दादी जो साथ हुए तो कितो चोखो लागे है, क्योंकि बुजुर्ग है घर परिवार ही नहीं हुआ करे है। वे उनने जोड़न रखे और साथ ही अगर बडेरा नहीं रहे तो अपन अनुभव कौन दिया करे। तो जिंदगी रा अनुभव है वे बडेरा सुई सीखना ने मिलिया करे, चाहे संस्कार हो, रीति रिवाज हो या वाणी अड़ी बात वहां जो कि भावनात्मक रूपों अपन ने सुरक्षा प्रदान कर सके। मुसीबत रो वह एकमात्र सहारो दिया करे। अपन कितनी भी रीस आ जाओ तो वे समझा बुझा नहीं एकदम शांत करते हुए कि देखो भाई अब रो मत करो और घर परिवार ने टूटने से हमेशा बचाए रखे है। तो बुजुर्ग तो अपनी जिंदगी में कितनी अहमियत रखे।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखो बड़ा बुजुर्ग रो साथ जते ताई परिवार माते रहा करे नहीं तो हर मुश्किल रो हल है वे आपने बता दिया करे है। और वारी जो सूझबूझ है वह आपाऊ बहुत ज्यादा होया करे, क्योंकि उम्र रहे इन पड़ाव माते वे बहुत सारा संघर्ष देखेड़ा हुआ है, बहुत सारा वारा अनुभव है, वासु भी आप सीख ले सका हाँ। पर आजकल देखा कि देखो बुजुर्ग रे प्रति कई तरह रो गलत और बुरो व्यवहार की घटनावा बहुत ज्यादा देखण में आ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कदी जानबूझ रहे तो कदी अनजाने में बुजुर्ग ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना रो सामनो करनो पड़े है। उम्र रही पड़ाव पर देखो वाने दवा और भोजन रे साथे साथे सम्मान और वाने समझण री भी जरूरत व्या करे है। बड़ा बुजुर्ग आप बताया जो घर री नींव हुआ ही करे है और ई वास्ते वारे प्रति कोई बुरो बर्ताव नहीं हुए, इरे प्रति लोगों ने जागरूक करण सारू आज रो दिन यानी कि 15 जून ने संयुक्त राष्ट्र विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस रे रूप में मनाया जाने री घोषणा करी ही।
0: पर देखो पहली तो आपा शीतल आ चीज कदे नहीं सुनी। पहले का टाइम में लोग नहीं सुनता क्योंकि वे अपरा बडेरा ने घर में वो बहुत अच्छी तरह रखता। पर आज कटे न कटे ये एकलो और स्वतंत्र रहना चक्कर में ये चीज आएगी है। पहले कभी वृद्धाश्रम नाम भी हुए हो कहीं।
1: बिल्कुल, और ये चीजा बिल्कुल बढ़ती जो आधुनिकता है विनरे ला रहे हो ही रही है। और भी कई दूसरा कारण है, लोगों ने जो है समझने की जरूरत है और आजकल बच्चा ने भी बहुत आ चीजा रे प्रति जो है संस्कार देना जरूरी हो गया है। तो समय निकाल कुछ पल है जका घर रे बड़ा रे साथ बिताना चाहिए, घर रे जरूरी काम और मुद्दा पर वारी राय भी लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: आसपास अगर आप कोई बुजुर्ग रे साथ कोई

0: तो अब बात करा आपणे अठे राजस्थान री एक एड़ी कला री जो 700 सू 800 साल पुरानी है। और इन परंपरा ने जो है अठेरा जो कुछ खास परिवार है वह आगे बढ़ाए रिया है। और एक कला री अगर बात करा तो आ एक बहुत ही अनूठी कला है जो राजस्थान रे माए ही जो है विशेष रूप से जानी जावे है। मैं बात कर रही हूँ फड़ री। और फड़ चित्रण कला जो है राजस्थान रे भीलवाड़ा जिले री शाहपुरा कस्बा री नामी मानी जाया करे है। और इरो उद्भव 800 ही होया करे है। और फड़ चित्रण रे बारे में और भी ज्यादा जानकारी देवन सारू आपा फोन रे माध्यम सु आमंत्रित करया हाँ फड़ चित्रकार आस्तिक तिवाड़ी ने। तो वासु फोन माते बातचीत करेला मंजू चारण।
1: आस्तिक जी, आकाशवाणी जोधपुर रे इन घनघोर कार्यक्रम रे अंगने आपरो गणमान स्वागत।
2: नमस्कार, खमागणी, राम राम।
1: आस्तिक जी, सबों पहली श्रोताओं ने ओ बताओ कि आफड़ कला काई है और उन्हीं काई विशेषता भी करे।
2: देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में कई सारी लोक कलाएं, जो फड़ कला है वो 800 साल पुरानी यानी कि 13वीं सदी की लोक कला कही जाती है। और ये हस्त निर्मित कपड़े पर प्राकृतिक रंगों द्वारा इसे हम चित्रित करते हैं।
1: आस्तिक जी, आपरी इन कलारी शुरुआत किया भी कहीं आप घर में पारंपरिक तरीका वो काम करता है या आप खुद इन्हें सीखियो?
2: देखिए, बचपन से ही पेंटिंग के अंदर मेरा बहुत रुझान रहता था और उसके बाद में जब इस लोक कला को मैंने सबसे पहले देखा पढ़ा तो आपको मैं बताऊं कि मेरे परिवार में इस कला का कोई कलाकार नहीं है। और जब मैंने इस कला के बारे में पढ़ा जाना और उसके बाद मुझे पता चला कि ये लोक कला लुप्त होने की कगार पर है और समाज से थोड़ा दूर होती जा रही है,
1: बिल्कुल,
2: तो उसी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस लोक कला को करूं और लोगों को बताऊं।
1: फड़ बनाते टाइम आप क्या क्या चरण व्या करें और इनमें सब चुनौतीपूर्ण हिस्सों का वे है, एक पूरी फड़ तैयार करना में आपने कितना टाइम लग जाया करे?
2: देखो, फड़ बनाने के लिए चरण मुख्यतः तीन चरण माने जाते हैं। सबसे पहला कपड़े को तैयार करना। कपड़े को तैयार करने के लिए हम चावल का मांड और मैदा का घोल बनाते हैं और रेजा नाम के कपड़े को हम जो भी चावल का जो मांड हमने तैयार किया है उसमें डुबो करके और उसपे फिर हम उसे लगाते हैं। रेजा नाम के कपड़े पर हम चावल का मांड और लई लगाते हैं।
1: पूरी फड़ तैयार करना में आपने टाइम की तो लग जाया करे?
2: ये जैसे हम बात करें वैसे तो उसकी साइज अकॉर्डिंग देखा जाता है इतना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं और कई कई फड़ ऐसी होती है जिसमें एक दो महीने भी लग जाते हैं।
1: अच्छा आशिक जी, फड़ पेंटिंग में लोक देवता और वासु जुड़ी हुई कई कथाओं दर्शाया करे है, आपरी पेंटिंग रा विषय किकर चुनाव करो?
2: ज्यादातर मेरे जो विषय रहते हैं वो ऐतिहासिक और समकालीन रहते हैं और जिसमें हमारे लोक देवता हैं और आधुनिक समय में जिस प्रकार हम आज का समय देख पा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे विषय में ज्यादा चुनता हूँ।
1: आपरी बनियोड़ी कोई ऐडी पेंटिंग जिकी आपरे हिवड़ा में रच और बस गई है, आपरे बहुत करीब है, उनके बारे में श्रोताओं बताओ।
2: देखो, वैसे तो सारी पेंटिंग ही मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जैसा कि आपने बात, तो मैंने एक फड़ बनाई थी जो अभी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस मौके पर मैंने राम जी के राज्याभिषेक के ऊपर एक पेंटिंग बनाई, जो बड़े ही भक्ति से और बड़ी श्रद्धा से आस्था से उस पेंटिंग को मैंने बनाया और वो

0: मुझे सबसे अच्छी और सबसे मन को आकर्षित करने वाली पेंटिंग थी।
1: वो सोशल मीडिया रो जमानो है आजकल, और आपन देखा कि सोशल मीडिया माध्यमों के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सोशल मीडिया आपरी कला ने लोगों तक पहुँचाने में कितना योगदान दियो?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया को अगर हम आज के समय में सही तरीके से यूज करें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखें कि पहले के टाइम पे हम देखते थे कि प्लेटफॉर्म तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज हमें एक ऐसा मंच मिल रहा है, स्पेशली जो लोक कलाकार हैं और लोक कला को जो बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमें एक मंच मिला है जिसके माध्यम से हम अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया ने काफी हमारी मदद की है और हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: भविष्य में आपरा कहीं लक्ष्य है और आप इन कला ने कट तक ले जाना चाहो?
0: मेरा लक्ष्य है कि ये राजस्थान की जो लोक कला है वो भारत में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका डंका बजे और विदेशों में भी इसकी पहुंच हो, लोग बाग इसको जाने और ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और मैं ये देख पाता हूँ कि विदेशों में भी भारत में भारत की जो ये पेंटिंग है, राजस्थान की जो पेंटिंग है, जब वो प्रदर्शनियों में लगती है तो किस प्रकार हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है वो हमें दिखाई देती है कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व करती है हमारे भारत का। तो मेरा यही रहेगा कि मैं जो हमारी फर्ड पेंटिंग है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रस्तुत करूं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए।
1: बिल्कुल, फर्ड कला रे संरक्षण ने अगर बात करा तो आज सब मोटी चुनौती इन संरक्षण में कई आ रही है।
0: जैसे मैं खुद भी एक जैनजी हूं और मैं जैसा बताऊं कि जो मेरे भाई बहन है, आजकल हम देखते हैं कि हम अपनी जो कहानियां हैं, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, उसके बारे में हम एक बार बताना भूल जाते हैं। यानी कि आज के दौर में हम देखें कि आजकल जैसे कई नई नई चीजें आती हैं, लेकिन हम अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी जो कल्चर वाली चीजें हैं, कलाएं हैं, तो उन चीजों को हम आज के दौर में थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। और भूलने का सबसे मेन कारण ये है कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, या जैसे हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहने की वजह से भी हम इन चीजों से थोड़ा दूर चले गए हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती यही है, जो जेन ज़ी है, यानी कि जो मेरे भाई बहन हैं या मुझसे बड़े हैं या और भी जो लोग हैं, उन्हें इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होने के कारण जो लोक कलाएं हैं और लोक संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही।
1: बिल्कुल,
0: मैं मानता हूं।
1: पहले रा लोग जो प्राकृतिक रंगा रो इस्तेमाल करता, तो आप अपनी फड़ बनाओ उन टाइम, आजकल जो नया दौर में नई चीजा आ रही है, सब लोग अपनी नुए तरीको ले लेन समय आ रही है, तो आपने भी लगे कि एडो नुआ तरीको है उन आप फड़ पेंटिंग में ज्यादा प्रसिद्धि पाई सके?
0: देखिए, जो पारंपरिक तरीका है वो अपनी जगह है, और आज के दौर में हम जिस तरीके से क्योंकि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जैसा कि प्राकृतिक रंगों को और प्राकृतिक जो पारंपरिक तरीका है अगर हम उससे तैयार करते हैं तो ज्यादा समय और ज्यादा चीजों की मांग करता है। लेकिन अगर हम आज के समय के जो रंग है और आज के समय की जो हमारे पास सुविधा है अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो पारंपरिक तरीका अपनी जगह है, लेकिन जो नया तरीका है उससे हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो नए रंग हैं, जैसे कि हम पोस्टर या एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों को बता पाएंगे।
1: और कितना लंबा समय तक टिक्योड़ी रहे इन वास्ते भी ऐडा कोई कलर आता रहला जो प्राकृतिक रंग आ तो वाने जल्दी नुकसान पहुंच जातो, या वे जल्दी ये कोई पानी रो छींटो भी पड़ी हुआ है तो बिखर जाता, तो आजकल कोई ऐडा रंग आवे की परमानेंट आपरी छाप छूट जाओ उन माते?
0: बिल्कुल, आजकल जैसे कपड़े पे अगर हम कर रहे हैं या कागज पे हम कर रहे हैं तो एक्रेलिक कलर आते हैं जो बिल्कुल उस सतह पर चिपक जाते हैं और फिर वो हटते नहीं और उनमें चमक भी काफी होती है। लेकिन आज हम बात करें कि प्राकृतिक रंग अपनी उसी जगह पर है। आज अगर हम देखें कि शेखावटी की जो हवेलियां हैं उन पर भी प्राकृतिक रंग है और आज भी वो बरकरार है, तो उन जो रंग है वो जो रंग है उनकी तो प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती, उन दोनों का तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो रंग है, एक्रेलिक जो कलर है, वो जल्दी तरीके से हम उसे काम में ले सकते हैं और वो लोगों की पहुंच में भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, और जाता जाता आप श्रोताओं के बीच इन पारंपरिक कला ने बारे में रुचि बढ़ाउन सारू की कहना चाहो?
0: जी बिल्कुल, मेरा कहना मेरे श्रोताओं को ये कहना है कि हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारी जो लोक संस्कृति

0: है, खासकर राजस्थान की तो संस्कृति है। देखिए ये हमारी जड़ें हैं और कोई भी वृक्ष जो है, हम पूरा जो भी समाज है वो वृक्ष है, और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लोक कलाएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमारी जड़ें हैं। तो अगर हम खड़े हैं तो हमारे जड़ों की वजह से खड़े हैं। तो हम अपनी जड़ों को जाने, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, और मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी संस्कृति को, लोक कलाओं को बढ़ावा दें और लोगों को बताएं।
1: बिल्कुल आस्तिक जी, आप आपरो अमूल्य समय निकाल और मासु जुड़िया इन सारू आपरे मोकले मान हिवड़े सु आभार।
0: बहुत बहुत आभार आप, धन्यवाद।
2: तो अवार अपा सुनी फड़ चित्रण कला माते फड़ चित्रकार आस्तिक तिवाड़ी सु मंजू चारण री फोन माते बातचीत।

0: मंजू जी, आपा देखो फड़ चित्रण ज्यों अपनी एक पारंपरिक कला है, यो ही जापा देखा है। देखो पुराने टाइम में या पहले भी अबार भी जो है कई घरों में जो लुगाया है जिको काम फुर्सत में या शौक रूप में करती ही, जैं कि देखो अपनी मम्मी दादी नानी टाबारे वास्ते सिलाई में बच्चोड़ा कपड़ा सू चिड़िया पर्स और दूजा खिलौना बनावती ही, और टाबरा ने वे बहुत पसंद आवता है। यो ही क्रोशे कपड़ा रा बैग हाथ सु बनोड़ा चिड़िया रा खिलौना और रंग बिरंगी की चैन आज देश विदेश में एक नयो स्टार्टअप बन गयो है। अपनी जो नवी पीढ़ी है वह अपने जगह बड़ा बुजुर्ग या कला है या घर में वारे कोई भी अड़ो कलाकार अगर है तो विने वे एक सोशल मीडिया रे माध्यम से मंच दे दियो है और इन्हें एक ग्लोबल मंच प्रदान कर नयो रूप देर फैशन रे साथ इन्हें जोड़ दियो है।
1: बिल्कुल शीतल, आपकी यो जूम की पहली तो गुड़िया ऊंट हाथी छिड़िया या अपन कह सका कि भाई एड़ा एरे तक खुनखुनिया वगैरह एड़ा बनाता हा। पर देखो ए तो कई हाँ पुराने टाइम में जको जड़ो सामान अवेलेबल हो बड़ी चीजा बन जाती, पर आज रो दौर में अगर आप बात करा तो देखो आप जो जो नई नई चीजा देखने मिले नहीं, तो आप देखियो कि छोटा बच्चा वास्ते वे वो सिंग वालो जको गुलाबी कलर रो आया करे उन्हें कहीं किया
0: यूनिकॉर्न
1: बच्चिया ने कितो पसंद है और आजकल बेड़ा ज्यादा बिक रही है।
0: कपड़ा रे खिलौना जो है विने खिलौने रे तौर पर जो है बच्चा ने अगर बना दो तो बहुत राजी व्या करे।
1: बिल्कुल, और पहली तो आप देखो कहानियां में ही सुनिया आप तो भाई एडो घोड़ो आतो हो यू कर दो, आजकल तो वास्तविकता में आएगो घोड़ो।
0: बिल्कुल, और इन्हीं तरीके रे नया नया अगर आप बच्चा ने जो है देखो अपने पारंपरिक तरीके से देर बनार देवा जैसे जिराफ है या शेर है खरगोश है आने भी आप जो है इनो रूप दे दे हो तो बच्चा जो है विने पसंद बहुत करया करे है। और इन्हीं तरीके से देखो क्रोशरी बात करा तो वह एक बुनाईरी कला है जिनमें सुंदर थाल पोश मेज पोश बच्चा रा कपड़ा और सजावटी चीजा हमेशा से ही जो है बनाई जावती ही। पर आजकल देखो क्रोशेरा फूल आवन लग गया, हेयरबैंड आवन लग गया, क्लिपा है, बैग है, पर्स है, मोबाइल कवर, टोपी, स्कार्फ, जैकेट, श्रग, ज्वेलरी तक तक आएगी है क्रोशेरी। और साथ ही साथ घर सजावटी चीजा री तो आप पूछो ही मत, इतनी चीजा आपने जो है क्रोशेरी बनेड़ी मिल जाए करे है। और
1: पहले तो आप सिर्फ एक रूमाल यूज करियो वो क्रोशेर बनियोड़ो जका चारों तरफ किनारी भी आ करती, और आजकल और पांचों ट्रेंड में आई हो
0: बिल्कुल, और तो महंगो मिल रही है क्योंकि आजकल हर कोई नहीं बनावे है क्योंकि पहले तो सगड़ा बनावता, पर आजकल
1: देखो फ्रिज कवर है।

0: हर तरह का रिकवर है, बेडशीट से कटहरी जल गई है।
1: बिल्कुल। और आप सोशल मीडिया पर देखो ना तो बिल्कुल फैशन फैशन ने इन जोड़ दियो है आजकल। जगह टाबर है नी वह अड़ा बैग लेना ज्यादा पसंद करया करे, मतलब ब्रांड की चीजें लेना की
0: ड्रेस
1: बजाओ।
0: माते भी एज फूल चिपी ओड़ा रही, बटन जेड़ा लगोड़ा है उन माते एड़ा कवर चढ़ी ओड़ा भाई।
1: बिल्कुल। तो कपड़ा सुबना बैगरी भी अगर बात करा तो विण में आजकल कहीं करे कि राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट बंधेज लहरियार कढ़ाई रो मेल देखने ने आपने ज्यादा मिल रही है। इन वजह से खाली आपने अठे नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच बहुत ज्यादा होएगी है और लोग इन्हें बहुत पसंद कर रिया है। जिन्हों कम खर्चे में आप रोजगार का अवसर भी लोगों ने जो है मिल रिया है। 18 कलाकारा ने भी जो है एक नयो स्टार्टअप कह सका वो मिल गयो है।
0: और दूजो यूं कह सका ना शीतल आपा की जो का प्लास्टिक रख लियो ना है बच्चा नुकसान करे, और कपड़ा रो बनियोड़ा है आप आने धो सको और पाचो साफ कर
1: बिल्कुल। बच्चा अगर मुंह
0: काम
1: में भी लेवे तो वाने की
0: कोई
1: नुकसान नहीं है।
0: नुकसान नहीं है।
1: और खिलौना री जी आजकल की चैन रो चलन भी बहुत हो गया है। बैगा में आप जो है की चैन री तरह जो है आरा खिलौना जो है लगा सको हो तो वो नवाचार भी आपने देखने ने मिल रही है। तो सोशल मीडिया रे माध्यम से नवी पीढ़ी जो है ये पारंपरिक कला ने ब्रांड रूप में ऑनलाइन मार्केट सु देश विदेश तक पहुंचा दियो है।
0: इन्हीं तरीकों आपा देखा कि पहले पुराना टाइम में आपारे घर में रालियां बनाया करता था तो कपड़ा पुराना कपड़ा बना था। आजकल कहीं रहा छोटी छोटी कतरन है इन्हें जोड़ आपस में और इतनी सुंदर सुंदर आप देखो तो ए बेडशीट है, इनारा कवर है, ऐसी कंबल है, ए बन बनन आइडिया है, कई तरह का बैठ का बनन आइडिया है। या आपन देखा कि भाई एक काथा कलारी बात करा तो पहले टाइम में कहीं तो जितो पुराना कपड़ा रहता नहीं, इन्हें शुरुआत जिन टाइम रही और बंगाल इन्हें शुरुआत हुई उन टाइम पुराना कपड़ा हुए धागा खींच और उन्हीं धागा ने काम में ले और वह बनाता हा। और आजकल तो धागा नवा वड्डू का चलो फिर भी और उन काथा कला ना इन तरीकों सब जगह फैल इतनी फैल चुकी है कि जिन्हें कोई हद नहीं। आजकल आपा भी ड्रेसों में काथा रा
1: सूट
0: सलवार
1: पहरिया
0: सूट और
1: करा।
0: सूट पहरा
1: बिल्कुल। और साड़ियां तो आ गई है साथ ही साथ चादरा है वह भी आया कर रहे। तो कह सका देखो पहली इरे टाइम में जब बचेड़ा कपड़ा सो आपा तो बस यूं ही जो है शौक शौक में चीजा बना देवता, लेकिन आजकल ये कला ने सच्ची में जो है एक नवो मंच मिल रियो है और एक नई पहचान मिली है।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: बिल्कुल, देसी खाने रही तो बात ही अलग होया करे है।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बाजरी री रोटली और फलिया रो साग अगर बात करा तो मुंडे में पानी आ जाओ।
0: बिल्कुल, और उम्र बढ़ने रे साथ ही नहीं, हाँ, शरीर में अपने देखो खासा बदलाव आया करे है। और खासकर बात करा आजकल री तो तीसरी उम्र रे पछे ही आजकल तो कई तरह री खान पान में समस्या देखने आई रही है। जिया कि देखो शरीर में कमजोरी रहने लग गई है, आप ज्यादा की काम नहीं करा तो ही जो है थकिया थकिया जो है रह वहां और डील दुखन लाग जावे है, ज्यादा बीमार पड़ने लग गया है, शरीर में
1: ज्यादातर देखो
0: कमजोरी
1: गोडा
0: रहने।
1: री समस्या हर कोई ने पूछो के मार तो दुख रिया है भाई। अब तो कैसा काम पा, ऐसे में बैठा कूलर में बैठा इन दुखे, पर सर्दी में भी दुखे।
0: बिल्कुल, और नींद नहीं आवे आजकल लोगों ने।

0: और साथ ही साथ बाल झड़ना तो देखो बहुत आम बात होगी है। तो कैसा कहा कि तीसरी उम्र है 25 हुई ही अगर अपनी मांसपेशियां यानी जो कि कमजोर होने लाग जावे है और ये वास्ते ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है जो कि घटन लाग जावे है।
1: प्रकटे शीतल इन कारण वो भी है कि अपनी जितनी भी सखियां है वे दिन रात अपने घरों काम में लागे उड़ी रहे और अपने खान पान माते उचित ध्यान नहीं दे पावे।
0: बिल्कुल
1: और महिला रिया करे घर की दूरी, अगर अपनी मम्मी अगर सो जावे तो पूरा घर केड़ो रह जावे। आप खुद सोचो, आप कल्पना भी नहीं कर सका तो घर की औरत अगर बीमार पड़ जावे तो पूरा घर ठप हो जाया करे। तो अपन अपन ध्यान रखना कितना जरूरी है ई वास्ते ही।
0: बिल्कुल ई वास्ते ही अपने खान पान में अपने प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गयो है। और प्रोटीन युक्त अगर भोजन की बात करा तो राजस्थान रो जो पारंपरिक और देसी भोजन है वेणो ज्यादा प्रोटीन और कोई खान पान में है ही नहीं। जे अभी बात करा मूंग करी मोट चना पंचमेल दाल ज्वार बाजरा तिल मूंगफली दही छाछ राब मट्ठा और देसी घी अगर आप संतुलित मात्रा में लेवा तो शरीर ने जरूरी पोषण है जको दे सका। हाँ
1: और अपन तो लेवा ही यार साथ ही देखो परिवार में टाबरा ने अपने परिवार और सदस्य ने भी देना चाहिए क्योंकि प्रोटीन तो हर उम्र वास्ते जरूरी है।
0: देखो बड़ा बुजुर्ग की अगर बात करा तो जद ही तो बड़ा बुजुर्ग जो है आज भी आप देख लो नहीं घर में एक टाइम अगर खाना खाना दाल जरूर बनाए है।
1: बिल्कुल।
0: और वे कहवे है कि भाई वाने जरूर और सुबह सुबह नाश्ते में शुरुआत में अपने आठे देखो अंकुरित अनाज ने शामिल करो जाते हो और दूध दही तो रो नाश्तो जो है विनो बढ़िया तो कोई नाश्तो हो ही नहीं सके है। और भोजन में आप दही छाछ और हरी सब्जियां शामिल करो तो आप पूरा संतुलित भोजन है जो को तैयार हो जाए करे।
1: और बाजरा मक्का रोटी हो या ज्वारी हो या बदल बदल आप धान ने लेता रहो ताकि आपके शरीर में कोई तरीका की कमी नहीं रहे। और मूंग दाल है चना दाल है ए तो लेना ही है। इन्हें साथ भी देखो बेसन का चीला है ढोकला है ए भी जरूरी है क्योंकि अगर आने ले वहां तो भी अपने पर्याप्त मात्रा में अपन मिल जाए। और सत्तू देखो बिहार और यूपी में तो चनों से कन्वीनो आटो बनाए और उन्हें काम मिले वो बहुत ही गुणकारी रहे चाहे गर्मी रो मौसम रो और सत्तू रे आटा रही यानी लाडू बनाया करे सर्दी वास्ते।
0: बिल्कुल। और बारे रो भोजन फास्ट फूड उम्र बढ़ने के साथ देखो पेट संबंधी समस्या पैदा कर सके इन वास्ते आने जो है कम कर देना चाहिए इन उम्र में। और ई वास्ते स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक भोजन जो है बढ़ती उम्र में अपने शरीर ने बढ़िया राख्या करे है।
1: तो हमेशा ले तो रहना है इन साथ ही सुना एक गीत।

0: और देखो मिसरीरो बाग तो लगा देवा, और बाग लगाड़ो जो है बाग लगड़ाऊ बगिया तो सुंदर लाग गया ही करे, और अपने बहुत सारी चीजें भी है जो कि मिल जाया करे है।
1: बिल्कुल सही बात है। और शीतल देखो हमेशा हम अपने कार्यक्रम में इमें एक कहावत जरूर बताया करा, तो अब बखत हुई गो इन कहावत रो। और कहावत कुछ यूं है, आजरी की मूर्ख ने समझावता ज्ञान गांठ रो जाए। इनो अर्थ वो है कि मूर्ख व्यक्ति ने ज्ञान देना व्यर्थ है, उन्हें समझाना माथे आपरी बुद्धि और ऊर्जा दोनों ही व्यर्थ ही जाया करे।
0: बिल्कुल, तो कई व्यक्ति है जगह बिल्कुल मूर्ख होया करे है, और जो है अपनी बात ने समझे भी नहीं है, तो उन माते अपन जो है समय व्यर्थ नहीं करना है, और आप जो है अपनी बुद्धिमता सु काम लो। और अपने अठहरी बात करा तो अपने अठहरा लोग यूं भी बहुत ज्ञानी रहे है, और खासकर बात करा अठहरा कुछ अच्छा लोग रही, तो वह हमेशा सु ही अपनी इन धरती रे वास्ते काम करता रिया है, इन प्रकृति रे वास्ते काम करता रिया है। और अपने अठारह गांव या अगर बात करा तो पूरा गांव मिल रहे जो है हमेशा कोई ना कोई एक लूठी जो है तकनीक कह दो या कह
1: या
0: दो
1: एडी कोई रीति या
0: रीत कह दो,
1: परंपरा अपना लेवे उनसु देखो भलाई सबरी हुई है करा।
0: बिल्कुल, और एडी एक आज रीत परंपरा या तकनीक कह दो वेरी बात करा पचेरी गांवरी जिकी है एक पेड़ एक मटको तकनीक कह हो, या एक पेड़ एक मटको रीत, पारंपरिक और बहुत ही फायदा वाली जल संरक्षण और वन संरक्षण रिया एक विधि है। ये विधि में राजस्थान रा झुंझुनू जिले रे पचेरी गांव में सूखा और रेतीला क्षेत्र रे माए पेड़ा ने हरा भरा राखण में आ बहुत ही सफल री है। इनमें पानी री तो बचत वही है, साथ ही साथ पौधा री नमी भी बनियोड़ी रहे है।
1: बिल्कुल तकनीक है वा काम की कर करे शीतल। एक मटको अपन लेनो है और मटको जेठा अपन पेड़ लगाओ उनसु थोड़ो सो ऊपर ही खाडो खो देनो, उन पाड़े मटका ने भी गाड़ देनो और उन मटका ने भरियोड़ो रखना है, ऊपर ढक्कन लगा दो ताकि और पछे उन ऊपर मिट्टी लगाई दो
0: और नीचे छेद कर देवानी,
1: बिल्कुल छेद कर दो ताकि वो पानी जो को मटका रो है वो वाष्प बनन ऊपर नहीं उठे, और उन छेद मु छेद बिल्कुल बारीक करना है ताकि थोड़ो थोड़ो पानी रिस और पेड़ जड़ तक जावे और
0: बिल्कुल
1: उन्हें
0: बूंद
1: नमी
0: बूंद
1: बने।
0: बूंद बूंद सिंचाई है जाके पौधा ने मिल जावे, तो
1: बिल्कुल
0: इस हो कहे कि एक तो पौधा जल्दी जड़ पकड़ ले क्योंकि इनमें नमी बनी रही,
1: हाँ
0: और जड़ पकड़ ले ही तो फिर भी पेड़ रो आप की फिर भी पेड़ रो की नहीं हो सके क्योंकि बटे देखो आंधिया बहुत आया करे है, तो पेड़ जो अगर शुरुआत में आप जब पेड़ लगावा नहीं तो वेरी जड़ा अगर मजबूत नहीं हुए तो वह पेड़ उखड़ भी जाया करे है। और सूखा क्षेत्र वास्ते आ तकनीक जो है बिल्कुल वरदान है, खरपतवार में नया

0: पर नियंत्रण में रखे, आसपास घास नहीं होने दे, और कम खर्चीली है और पर्यावरण रे अनुकूल भी है।
1: बिल्कुल यूं तो आप अगर सिंचाई करा तो देखो पानी खूब बेवेला और आड़ पड़े पेड़ पौधा झाड़ियां जंखाड़ उग जावेला, तो वह खरपतवार है वह इन तकनीकों आप उगनू बचाए सका। हाँ
0: बिल्कुल, और इन्हीं तरीका से राजसमंद रे पीपलांत्री गांव री बात करा तो एक बेटी रे जन्म माथे 111 पेड़ लगायो जावे है। अभी जो है एक वन संरक्षण तकनीक कह दो या रीत कह दो, अभी बहुत ही ज्यादा
1: और
0: अच्छी
1: उन्हें
0: लगी।
1: पेड़ ने देखो शीतल एक भाई रे जिया पाल पोषण व लड़की बड़ो करिया करे और हर राखी रे दिन आन उन पेड़ रे राखियां बांधिया करे और त्योहार 18 देखन रे लाइक है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं तरीके की जो कि रीता है वह अपने अठे प्रकृति संरक्षण रो काम कर रही है, और आपने भी जो है आ रीता रो मान

0: 11 पेड़ लगायो जावे है। अभी जो है एक वन संरक्षण तकनीक कह दो या रीत कह दो, अभी बहुत ही ज्यादा
1: और
0: अच्छी
1: उन
0: बात है।
1: पेड़ ने देखो शीतल एक भाई रे जिया पाल पोषण वाला की बड़ो करिया करे और हर राखी रे दिन आन उन पेड़ रे राखियां बांधिया करे और त्योहार 18 देखन रे लाइक है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं तरीके की जो कि रीता है वह अपने अठे प्रकृति संरक्षण रो काम कर रही है, और आपने भी जो है आ रीता रो मान सम्मान राखनो है और पेड़ पौधा ने बचा राखनो है।

0: और आज देखो आपां बात कर रहे हैं इति तरीके री अठहरी रीता री, तो अपने अठे देखो कई रीता है जो कि बहुत अच्छी भी है, पर कई बार एड़ी रीता होया करे जो समाज रे वास्ते बहुत बुरी भी होया करे है, और लोग जो है इन्हें कुरीति रो रूप दे दिया करे है।
1: बिल्कुल ही उन तरीकों अगर आप देखा तो आप दहेज में लेन और देने री जकी रीत है बा बड़ी ही
0: खतरनाक होएगी है,
1: खतरनाक।
0: क्योंकि देखो पहली आपने अठे लेन देन की अगर बात करानी तो हर जो परिवार है आपे बेटी ने जो है आपरे हिसाब सारो या आपरे प्रेम में जो है चीजा दिया करता है, और वह एक बहुत ही प्रेम भरी कह सका रीत होया करती ही।
1: पर वे उपहार स्वरूप देता है, पर देखो आजकल तो आ एक तरीका कुरूति बन गई है और हर व्यक्ति इन्हें ज्यादा ज्यादा लेना कोशिश करे कि मैं आप बच्चा माते तो खर्च करी हूं तो आपने तो देना पड़ते।
0: बिल्कुल, और आजकल देखो कोई सोचा करे कि मतलब अनपढ़ समाज में या मतलब बिना पढ़ा लिखा लोग जो है ये चीज ने कर है, पर एड़ो नहीं है, आजकल
1: बहुत पढ़िया लिखिया
0: पढ़िया लिखा
1: लोग
0: लोग भी अड़ा कर रहा है, और अपना हर आए दिन जो है अखबारों में भी देखा इन तरीके की खबर आया करे कि दहेज सुप्रताड़ित थोड़ कोई महिला रे साथ जो है दुर्व्यवहार हो रही है या वेरी जान ले ली गई है, तो इन तरीके की खबर जो है बहुत ही सुनने में भी बहुत बुरी लग गया करे है, और एक समस्या ने बहुत ही मोटे तौर पर आपने दिखाया करे है कि किन तरीके से दहेज प्रथा है जो कि बहुत ही मोटी कुरीति बनती जा रही है।
1: बिल्कुल। और आजकल देखो पैसा वाला लोग तो देखा देखी के चक्कर में है, अनाप शनाप करता जा रहा है, पर अपन ने नहीं देखा देखी नहीं करना है। जितना आपरी चादर है उतना ही पग फैलाओ और इतना भी वाने आपरे ऊपर हावी मत रेवन दो कि भाई वे लोग अपन को ज्यादा मांग करे।
0: बिल्कुल, और इन्हीं वास्ते अपने दहेज जड़ी कुरीति नहीं जो है इन्हें अपने रोकनो है, और
1: और
0: अगर हर
1: जड़ सु
0: व्यक्ति
1: मिटाना री
0: जड़ सो
1: कोशिश
0: मिटा
1: की
0: हर व्यक्ति अगर सोच ले आपरे घर में अगर वो कदम नहीं उठावे वो दहेज लेनो और देनो अगर बंद कर देवे तो अपने आप ही जो को समाज है वो सुधर जावे। लोग
1: पर शुरुआत आपने घर से ही करनी पड़ी क्योंकि आप दुनिया ने नहीं बदल सका, आप अपने आप ने जरूर बदल सका।
0: बिल्कुल, और ये बात मैं तो ही सुनावा एक और गीत।

0: मंजू जी, पहली बुजुर्गारी सीख होती कि घर बनाओ छोटो, कपड़ों पहनो मोटो और खाओ बाजरे रो रोटो।
1: बिल्कुल
0: पर
1: सही बात है।
0: आजकल ऐसी बिल्कुल बदल गई है। आजकल वही क्यों है, घर बनाओ मोटो, कपड़ों पहनो छोटो, कर्जो ले लो मोटो, खाओ होटल रो रोटो और रहो हमेशा टोटो। तो इन
1: सही
0: वास्ते
1: है।
0: बिल्कुल, अगर आप बड़ा बुजुर्गारी सीख नहीं मानोला तो जो है जीवन में आप हमेशा दुखी पाओला। इन वास्ते बुजुर्गारी सीख है जे वह कदी नहीं नकारनी चाहिए जे। तो इन बात माते ही सुनावा एक और गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूशनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की रवि भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी

0: तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक

0: याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और

0: तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्न लाल भगत राम ने, सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज़, फिल्म का नाम दर्द।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
1: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
0: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है, हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा।

0: जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है।
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे।

0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और अब क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये।
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे
1: सुनते
0: भी
1: है ना, मुझे भी तो सुनते हैं आभूषण भाग तीन।
0: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
5: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
6: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
4: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
1: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी।

0: देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, चार प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे, उस पर ये और मुसीबत हुई। मायके में एक फौजदारी हो गई, पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती, चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना ना था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे।

0: कौन जाने, वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए, मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, शीतला ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
1: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
2: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए, संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी, उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
2: कहां से आते हो भैया?
1: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
2: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगी।
1: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
2: हाँ।
1: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
2: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाओ सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
2: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
2: जिनके भाग्य में लिखा

0: करना है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के करम थोड़े ही फूट गए हैं।
1: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
2: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
1: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा, मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
3: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
4: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
5: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
4: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
5: जी।
4: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
5: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: हाँ,
0: है ना?
1: और दुगना होके मिलता है.
0: बिल्कुल दुगना क्या, चौगुना आठ गुना होके मिलता है, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल. और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें.
0: बिल्कुल लेते हैं।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून, उनके साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप
1: बिल्कुल
0: जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
0: या
1: उनकी।
0: फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे, या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें

0: वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं. उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं. तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है.
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही. ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है. कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं. अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही. तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ
0: काम कर रहे हैं.
1: ऐसा हो जाता है. उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है.
0: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है. ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है. तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए. और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए. उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए. और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है. और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है. कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है. तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए.
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए.
1: बिल्कुल, मना लेते हैं.

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनके मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है, दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती, बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा, हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
1: वो
0: है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज हैं। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: आप क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: कहाँ गुम हैं आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ.
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी.
1: बहुत इंतजार है क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे.
0: नहीं आ रहे. और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं.
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है. तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है.
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं.
0: वो तो है. लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें. थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है. बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए.
1: बहुत
0: कई सारे
1: है.
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए. बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए. इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे.
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं. पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना.
0: जी,
1: क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है. तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है. कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं. तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है. तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है. और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है. इससे पानी की बचत तो होती है साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है. तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए.
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए. छत, दीवारें और

0: खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा ना हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं, तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है, जो बोतल्स वगैरह है और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत, सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर, छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है। और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयों और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयों सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाइयों खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना, वो कड़क
1: रहती है। जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का
0: नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए।

0: की मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, दो ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आप

0: का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए। शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्य उदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं,
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती तो माइंड में लगा रहता है अब क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश ये होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।

0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया। तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने। मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारी किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है। आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही
1: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता है।
0: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए। यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेन जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हमने तो टीवी देखा। बिल्कुल, टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक का,
1: किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी

0: चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं, तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति। हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में, सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं,
2: प्रतिपल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो हैं वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक की अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। हर रोज लिखिए, क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फलां फलां ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
2: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
3: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में

0: वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित नहीं करेंगी,
0: विचलित करेंगी नहीं आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी, किसी से मिलके या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

0: शारदा जी गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष है ऑफिस में है, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात करें वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
0: और फिर तो से अपना काम करें।
1: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
1: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं

0: जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो

0: और बढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिससे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए। तो
0: सात्विक का मतलब शाकाहारी।
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के चार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया, और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेन जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम

0: हाँ जी, स्वागत है आपका इन खूबसूरत लाइंस के साथ कि सुरों की महफिल जब दिलों से जुड़ती है तो हर फरमाइश एक खूबसूरत याद बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नीतीश और आप सुन रहे युववाणी का मंडे स्पेशल फरमाइशी प्रोग्राम, जो आपकी पसंद ही हमारी प्रस्तुति बनती है, जहाँ आप हमें अपने चाहने वालों के नाम, उनकी पसंद के गाने और दिल से निकले जज्बात भेजते हैं, और कभी खत के जरिए तो कभी मेल से तो कभी व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप किसी अपनों के लिए अपने नाम या फिर गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आज की शाम बिल्कुल युववाणी का प्रोग्राम आपके लिए, और हमें लिख सकते हैं आप। हमारा ऑफिस का पता है आकाशवाणी जोधपुर, पावटा सी रोड, और मेल एड्रेस का पता है युवा पसंद jodhpur@gmail.com, और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो है 9414332939। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9414332939। आपका संदेश पहुंचेगा और आपकी फरमाइश जरूर बजेगी आपके अपने रेडियो पर, ओनली ऑन FM 102.1 मीडियम वेव 531। और आज की शाम मेरे साथ है
1: आपकी रेडियो दोस्त हर्षिता टाक। तो शुरू करते हैं आज का ये शाम का सफर और सुनते हैं आज का पहला ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों, आज की महफिल में पुराने दौर के वो सदाबहार धुने हैं जो आज भी दिलों की धड़कनों में बसती हैं। अभी आपने सुना दर्दे दिल, और अब पेश है आसमान जितनी विशाल मोहब्बत का एहसास कराने वाला गीत नीले नीले अंबर से। और इस गीत की फरमाइश की है मेरठ की इंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन।
1: और साथ ही साथ इसी की फरमाइश आई है बोरी खुर्द जाफराबाद से सुधाकर राजे प्रशांत संचित प्रथमेश सरवत देशमुख की। वही गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह दलजीत राजदीप गुरलाल अविराज गुरनौर और शुभदीप की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, भी आपने सुना गीत नीले नीले अंबर से फिल्म कलाकार और किशोर कुमार की दिलकश आवाज में। और वाकई नीले नीले अंबर पे जब भी काली घटा छाएगी ना, तो इस गर्मी से हमें राहत जरूर दिलाएगा। और फिलहाल जो अगले गानों की फरमाइश आई है वो आई है जिला खंडौन संवाद मध्य प्रदेश से अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, भाई राजकुमार और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो गीत है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।
1: और ऐसे ही सेम फरमाइश आई है पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा की। वही किशनगंज बिहार से रविंद्र, मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया की।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

0: श्रोताओं, भी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाज में गीत ये दिल तुम बिन फिल्म इज्जत से, और हाल फिलहाल आप इंजॉय कर रहे युवानी ऑनली ऑन एफएम 102.1 पे फरमाइशी प्रोग्राम नीतीश और हर्षिता के साथ।
1: बिल्कुल नीतीश, जोधपुर की इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी के बीच जब भी हवा का एक ठंडा झोंका आता है तो दिल खुश हो जाता है। वैसे आज हवाओं का भी दिन है, यानी ग्लोबल विंड डे, तो इस ठंडी हवा के झोंके का मजा लीजिए, फोन को थोड़ी देर आराम दीजिए और सुनते रहिए हमारा फरमाइशी कार्यक्रम। और इसी के साथ आगे की फरमाइश आई है।
0: हर्षिता, आगे की फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की।
1: तो बढ़ते कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं इनकी पसंद।

0: शतोन जी के साथ जो अगली फरमाइश आई है वो छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाला दुखानी सफद जुही इकबाल इमरान अहमद और नई दिल्ली कापसेड़ा बॉर्डर से बिटिया आसमा आसमा परी रबिया अशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली की ओर से।
1: वही बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद इकबाल अखलाक आमना आसमा राबिया परी आशु जूही सदफ बागवान की।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: श्रोताओं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी में और इस आवाज का नाम नितेश और मेरे साथ हर्षिता है और युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है और इस बीच जो अगली फरमाइश आई है वो गांव नाथना पंजाब से हरजिंदर जसवीर जस्सी सीता और गीता की तरफ से
4: वही कभी रेडियो श्रोता संघ छत्तीसगढ़ से देवशंकर अजय तुषार टोली बेबी पूजा राधिका और प्रभा देवी की
3: और वही साथ ही साथ बाड़मेर से प्रहलाद सारंग तो चलिए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं

0: श्रोतों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में, जहाँ चल रहा है मंडे स्पेशल फरमाइशी प्रोग्राम ओनली ऑन एफएम 102.1 और मीडियम वेव 531 हर्ट्ज पर। और आज की शाम मैं हूँ आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नीतीश, और मेरे साथ हर्षिता है। युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, और इस बीच जो अगली फरमाइश आई है वो फिल्म कट्टी पतंग, गीत प्यार दीवाना होता है और गायक है किशोर कुमार, और ये फरमाइश की है पद्मा टॉकी से नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बैन शाह और राजेंद्र शाह।
1: वही सेम फरमाइश आई है लक्सर हरिद्वार से ताज मोहब्बत अंसारी, गुलाम साबिर और महराज की। वही जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिचारनिया की।
0: तो चलिए इनकी पसंद और इनके परिवार, पूरे परिवार की पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद फरमाइशी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फरमाइशी पिटारे में से अगली फरमाइश किसकी निकलती है। तो अगली फरमाइश आई है हर्षिता भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परियार। वही साथ ही साथ जो अगली फरमाइश आई है वो कहाँ से आई है?
1: बिल्कुल नीतेश, अगली फरमाइश आई है बागपत यूपी से संजय नमन आपा डिंगड़िया की। वही नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा गोस्वामी की।
0: और वही इसी गाने के लिए जो फरमाइश आई है वो आई है प्रताप नगर जोधपुर से, मनोहर सरोज पंकज करण अर्जुन। तो चलिए इनकी पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ जी, वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का युववाणी प्रोग्राम में। और जो अगली फरमाइश आई है वो रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी हिमलता हीना हर्षित और खुशी की तरफ से।
1: वही फ्रांसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डोडी की, वही सेक्टर 67 चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, कैथल और अमनदीप की।

0: शतंस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है युवा बसंत फरमाइशी प्रोग्राम में। और जो अगली फरमाइश आई है वो खांडा पलसा जोधपुर से है। आयशा, फहिमा, अफसाना, मिसबा, सायरा, साहबीर, मोहम्मद, असलन, अहमद, आसमा और साले।
1: वही कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टी बजाज की। वही जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस,

0: श्रोताओं, ये सिलसिला था फरमाइशों का और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। मैं था आज की शाम आपके साथ आपका रेडियो दोस्त नीतीश, और मेरे साथ
1: आपकी आरजे दोस्त हर्षिता टाग। हमारे साथ कंसोल पे थे कल्याण जी, और वहीं प्रस्तुति थी कार्यक्रम की राजेश लामरोड, और संयोजन था मनीष कुमार सोलंकी का। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का रिले कुछ ही पलों में किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के

0: बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

हेलो हाय गुड इवनिंग, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट राधिका राठी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड इवनिंग जोधपुर। दिन भर के भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों के साथ इस खूबसूरत सी शाम को और भी खास बनाने का। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

गुड इवनिंग जोधपुर। दिन भर के भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों के साथ इस खूबसूरत सी शाम को और भी खास बनाने का। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं अपने रेडियो दोस्त राधिका राठी के साथ और आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। जोधपुर की शाम भी कमाल की होती है, चाहे क्लॉक टावर के आसपास की रौनक हो या उमेद भवन पैलेस की जगमगाहट। हर कोना शाम ढलते ही और भी खूबसूरत सा लगने लगता है।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरन जीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: शाम का अपना एक अलग ही जादू होता है। किसी के लिए चाय की प्याली, किसी के लिए दोस्तों की महफिल और किसी के लिए कुछ

पुरानी यादें। आज की शाम का एक खूबसूरत सा ख्याल है, सूरज डूबता है तो अंधेरा नहीं, नई सुबह की उम्मीद छोड़ जाता है। तो अगर आज का दिन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो याद रखिए, आने वाला कल एक नया मौका लेकर आएगा।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कभी कभी खुशी बहुत बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में मिल जाती है। शाम की ठंडी हवा, मनपसंद गाना या किसी अपने का अचानक आया हुआ एक मैसेज।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं अपने रेडियो दोस्त राधिका राठी के साथ और सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर। कई बार शाम उन लोगों की याद भी ले आती है जो हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग जिंदगी में हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हर पल साथ रहती है।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बीरा मंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।
5: दोस्तों, अगर आपका दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो ये बात याद रखें, हर शाम ये बताने आती है कि दिन चाहे जैसा भी हो, खत्म हो जाता है, तो बस खुद को थोड़ा वक्त दीजिए।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त राधिका राठी के साथ गुड इवनिंग जोधपुर। दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी इंसान, किसी जगह या किसी याद से जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं हर गाने से हमारी भी कहीं ना कहीं कोई याद जुड़ ही जाती है। आज का अगला गाना शायद आपको भी किसी खास पल की याद दिला दे। तो आँखें बंद कीजिए, मुस्कुराइए और सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, शाम के वक्त आपको सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? अगर मेरी बात कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना। जी हाँ, एक कॉलेज टाइम का एक ये भी वक्त था जब हम दोस्तों के साथ शाम के वक्त चाय पीने जाया करते थे। तो ये एक अब आज सब अपने अपने काम में इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि ये भी एक सिर्फ याद बन के रह जाती है।

तो दोस्तों, आपकी ये शाम हमारे साथ और भी खूबसूरत बनी होगी, इसी उम्मीद के साथ अब विदा लेने का समय हो चुका है। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राधिका राठी। आप सुन रहे थे गुड इवनिंग जोधपुर। आपसे फिर मिलेंगे नई बातें और नए गीतों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM Sun City।

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से रिले कार्यक्रम।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। हमारे सभी फौजी साथियों और सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गीत था। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

मैं विद भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। अपने सभी फौजी साथियों का एक बार फिर हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म का गीत था। एस एच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। सूरज फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफी का गाया। हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने। जयमाला कार्यक्रम की यही थी श्रोताओ आखिरी पेशकश। आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओ, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म के नगमे।

0: खत्म ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने,
1: देखें
0: दुनिया बसाऊंगा।

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: ये दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, फिल्म थी तेरे घर के सामने। और आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आपको हम सुनवा रहे हैं इसी फिल्म के नगमे।

सचिन देवर्मन की तर्ज हसन जयपुरी के बोल मोहम्मद रफी की आवाज आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने इस फिल्म का गीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोताओं अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए तेरे घर के सामने इस फिल्म के नगमे।

के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। तो आइए सुने झलकी नीम हकीम।

0: दर्द तो मेरी जान लेकर ही रहेगा।
1: ये दर्द ना हुआ आफत हो गई। मैं पूछती हूँ जी, ये हाय हाय करके सारा घर को सिर पर उठा रखा है। कसम से कहती हूँ, इस दांत को निकलवा क्यों नहीं देते?
0: क्या मतलब?
1: लो अब इन्हें मतलब समझाओ। देखो जी, तुम्हारी जगह अगर मेरे दांत में दर्द होता तो कब का निकाल देती?
0: ठीक कहती हो भगवान, मैं भी यही कहता हूँ।
1: क्या कहते हो?
0: यही कि मेरी जगह अगर तुम्हारे दांत में दर्द होता तो मैं भी कब का निकलवा देता।
1: तो मेरा दांत तो तुम निकलवाने को तैयार हो, और अपना दांत ही जो दर्द कर रहा है क्यों नहीं निकलवा देते? हाय हाय करके मेरे सर में दर्द कर दिया।
0: भाई मेरी तो हिम्मत होती नहीं। हे भगवान, उसे देखा था सुगत को, जब उसने अपना दांत निकलवाया था उसका मुंह कैसा सूज गया था।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये जो हाय दर्द कहकर और चिल्ला चिल्ला कर मेरी बेइज्जती करवा रखी है, उसका क्या करूं?
0: क्या मतलब? यानी कि मेरी हाय हाय करने से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है देवी जी?
1: ओहो, पड़ोस न जाने क्या सोचती होंगी कि पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह सुन रही हूँ जो तुम चिल्ला रहे हो।
0: ठीक है, लेकिन मैं मेरा दांत
1: सुनो जी, मैं जब छोटी थी तो मेरा भी

0: बार दांत दर्द हुआ था। अच्छा। उस वक्त मेरी नानी जी ने मेरे दांत के नीचे देसी घी का गर्म रुई का फोया रखा था।
1: फोया?
0: हाँ जी, रुई को गर्म देसी घी में भिगोकर दांत के नीचे रखा। कसम से कहती हूँ मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया था।
1: तो वही लाओ ना भगवान, मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है।
0: अरे वही तो लाई हूँ, लो ये कटोरी में गर्म घी और ये रुई का फोया, लो ये मुँह में रखो, खोलो मुँह, ये लो। क्या हुआ भगवान, ये पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। अरे क्या बात है, घी क्या ज्यादा गर्म था?
1: गर्म? ओहो, दांत के साथ सारा मुंह भी जल गया।
0: बाप रे, भगवान ने क्या
1: से कुछ भी नहीं खाया, खाली दूध पीकर गुजारा कर रहा था। अब तो दूध भी कैसे पिया जाएगा।
0: तो तुमसे किसने कहा था कि जल्दी से मुंह खोल दो, घी गर्म था तो थोड़ी देर ठहर जाते।
1: तुमने नहीं कहा था कि मुंह खोलो?
0: सुनो जी, एक बार और मेरे दांत में दर्द हुआ था।
1: अच्छा, फिर?
0: कसम से कहती हूँ मेरी दादी जी घर पर आई हुई थी, बस उन्होंने फिटकरी जलाकर और गर्म पानी में घोलकर मुझे जो कुल्ले कराए और बस,
1: फिर
0: मेरे दांत का दर्द फौरन गायब।
1: तो क्या फिर अब मुझे भी कुल्ले करवाओगी?
0: हाँ जी, मैंने फिटकरी जलाकर रखी है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, अभी लाती हूँ। कौन? आती हूँ। कांता बहन आओ। बहन आओ।
2: क्या बात है शांति बहन, क्या भाई साहब की तबीयत कुछ खराब है?
0: हाँ बहन, क्या बताऊँ, इनके आज सुबह से दांत में बहुत दर्द है। कसम से कहती हूँ मेरे तो नाक में दम आ गया है।
2: क्या, दांत में दर्द? बहन मेरी मानो तो लौंग का तेल लगाओ। हमारे उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था।
0: हाँ।
2: मैंने लौंग का तेल लगाया, फौरन ठीक हो गया।
0: अच्छा, लौंग का तेल मगर यहाँ मिलेगा कहाँ?
2: मैं देखती हूँ, घर में शायद बचा हुआ पड़ा हो।
0: बड़ी मेहरबानी होगी बहन।
2: मेहरबानी की क्या बात है बहन, आए आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं अभी लाती हूँ।
0: ठीक है। मैंने कहा जी, लो ये गर्म पानी में फिटकरी घुली रखी है, लो कुल्ले कर लो।
1: पानी पानी गर्म तो नहीं है?
0: देख लो ना।
1: हाँ ठीक है, मेरा तो मुंह न जाने कैसा कैसा हो गया।
0: अच्छा, मुंह तो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, मैं कहती हूँ कुल्ले करो।
1: अच्छा ठीक है।
2: लो शांति बहन, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिली है, मैं रुई पर ही लगा लाई हूँ। अब ये रुई तुम मुंह में रख दो, ठीक हो जाएंगे। मैं जाती हूँ, सारा काम पड़ा है, जाके बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी साफ करने हैं।
0: सुनो जी, ए जरा ये रुई मुंह में रख लो, ये मुंह खोलो।
1: मगर ये फिटकरी का पानी?
0: आ, ये बाद में कर लेना, तुम मुंह तो खोलो।
1: लो। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो?
0: अजी अब क्या है?
1: भगवान सर, तुम भाई साहब मेरी चाय साहब रखी है।
0: ओहो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: बताता कैसे देवी जी, तुमने रुई से तो सारा मुंह बंद कर दिया था। खैर मैं खुद ही रख लेता हूँ। ऐसे मर गया, मर गया।
0: और क्या हो गया?
1: मेरी तो जान ही निकल गई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब।
0: ओहो, मेरी मानो तो डॉक्टर के पास चलो।
1: डॉक्टर के पास?
0: इस मुंह में दांत को निकलवाना ही होगा।
1: मगर
0: अगर मगर कुछ नहीं जी, चलो डॉक्टर के पास
1: चलो। आए मैं मरा, आए
0: नमस्ते डॉक्टर साहब।
3: नमस्ते। हाँ, तो कौन से दांत में तकलीफ है?
0: देखिए डॉक्टर साहब, ना मैं सुई लगवाऊंगी और ना सुन करवाऊंगी, बस हम बहुत जल्दी में हैं, जल्दी से आप दांत निकाल दीजिए।
3: कमाल है, आप तो बहुत बहादुर और हिम्मत ही लगती हैं। कौन सा दांत है?
0: चलो जी आगे बढ़कर अपना दांत दिखा दो।
3: क्या आप? ये आइए, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए।
1: मगर डॉक्टर साहब, दांत निकलवाने में ज्यादा दर्द तो नहीं होगा?
3: बिल्कुल नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। नर्स?
4: यस डॉक्टर।
3: जरा मेरे औजार तो देना।
4: ओके डॉक्टर। ले डॉक्टर।
1: क्या डॉक्टर साहब, आप इससे मेरा दांत निकालोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों?
1: मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा।
3: लगता है आप बहुत डर रहे हैं।
1: मेरे तो सर घूम रहा
0: है। कोई बात नहीं,
1: बड़े बड़े औजार देखने में डरावने लग रहे हैं।
0: कोई बात,
1: ये डॉक्टर इनसे ही मेरा दांत निकालेगा?
0: अजी मैं कहती हूँ तकलीफ भी तो दूर हो जाएगी, आज सुबह से ही तुमने सारा घर सरगर उठा रखा है।
3: हाँ, तो आप तैयार हैं दांत निकलवाने के लिए?
1: क्या मतलब, मैं देखता हूँ कौन मेरे दांत को हाथ लगाता है।
3: ये क्या कहते हो?
0: अजी मैं कहती हूँ दांत नहीं निकलवाना। क्या?
1: नहीं बिल्कुल नहीं।
3: ये बैठे बिठाए क्या हुआ? ए हजरत, दांत निकलवा लो।
1: बस खबरदार, जो दांत का नाम भी लिया तो।
0: अजी तुम्हें क्या हो गया है, दर्द तो दूर हो जाएगा, अब दांत निकलवाओ।
1: हर किस नहीं, मेरे दांत के पास आने की जरूरत भी की तो। चलो घर, फौरन घर चलो, मेरा दांत अपने आप ठीक हो

0: जाएगा।
1: और लेकिन दांत?
0: हम घर जाकर अपना घरेलू इलाज करेंगे मगर दांत नहीं निकलवाएंगे।
1: अच्छा चलो
2: भाई, भाई मेरे दांत तो सुनो, मेरी फीस सुनिए।
1: अजी मैं कहती हूँ उठना है कि नहीं? आए लो, ये तो मजे में सोने लगे। अरे उठो ना।
0: क्या?
1: एक कसम से कहती हूँ, जब से डॉक्टर के पास से आए हो सो ही रहे हो। लो चाय पी लो।
0: मगर पीऊँ कैसे, मेरी तो दांत के तरफ से जान निकलने लगी है।
1: ओहो, अभी तो चैन से सो रहे थे, डॉक्टर के पास गए भी और दांत क्यों नहीं निकलवाया? अब मैं क्या करूँ?
0: ऐसा करो, ये चाय तुम पी लो, मेरे तो तरह ओफ,
1: ओफ। हे भगवान, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रहे, मैं क्या करूँ?
3: क्यों बहन शांति, अब कैसा है तुम्हारी इनके दांत का दर्द?
1: क्या बताऊं बहन,

0: सो ही रहे हो, लो चाय पी लो।
1: मगर पीऊं कैसे, मेरी तो दांत के तरफ से जान निकलने लगी है।
0: ओहो, अभी तो चैन से सो रहे थे, डॉक्टर के पास गए भी और दांत क्यों नहीं निकलवाया, अब मैं क्या करूं?
1: ऐसा करो, ये चाय तुम पी लो, मेरे तो तरह ओफ,
0: ओफ। हे भगवान, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रहे, मैं क्या करूं?
2: क्यों बहन शांति, अब कैसा है तुम्हारे इनके दांत का दर्द?
0: क्या बताऊं बहन, इनका तो खाना पीना भी बंद है।
2: अरे ये दर्द भी तो जानलेवा होता है, तुम ऐसा करो,
0: हाँ
2: इनके जिस दांत में दर्द है ना,
0: हाँ
2: उसके नीचे ये पत्ते दबा दो, फौरन ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा, कैसे पत्ते हैं?
2: एक बार मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तब मेरी माँ ये पत्ते लाई थी,
0: हाँ
2: मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया था। तो फिर आऊंगी पता करने, सारा घर का काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है।
0: लो जी ये पत्ते मुँह में रख के देख लो,
1: बड़ा चिकित्सक टेस्ट है इनका तो।
0: अरे ठीक हो जाएगा, घबराओ मत।
3: कमाल है, मुझे तो कांता ने बताया कि तुम्हारे इनके दांत में दर्द है।
2: अरे हाँ,
3: आ की आवाज तो आ रही थी, मैंने समझा शायद भाई साहब रोजाना की तरह रियाज कर रहे होंगे।
0: नहीं बहन, ये गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे।
3: अरे हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था कि आज जहाज कुछ लंबा हो गया।
0: हाँ बहन, इनको बहुत तकलीफ है।
3: अरे हाँ, दांत में कुछ लगाया है?
0: अरे सभी कुछ तो लगाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही किया।
3: कमाल है, तुम ऐसा करो, ये लहसुन लो, मैं छील कर लाई हूँ, तुम फौरन जिस जगह दांत में दर्द है उसके नीचे दबा दो।
0: लेकिन
3: अरे लेकिन वेकन को छोड़ दी। कमाल है, मीतू बहन भी आ गई। अरे आना आ मीतू।
4: अरे मैंने भी सुना था कि इनके पति के दांत में दर्द है, मैंने कहा पड़ोसन के नाते।
3: बहन ये तो हमारा फर्ज है।
4: मेरी बात सुनो बहन, हाँ। वो लहसुन मुँह से निकलवा कर ये मैं जो दवा रुई में लाई हूँ ना, हाँ। ये रख दो, फिर देखना।
0: लेकिन
4: लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहन, एक बार मेरी माँ के दांत में दर्द हुआ था, तब डॉक्टर ने ये दवा दी थी, बस एक बार लगाई, आज पूरे 5 साल हो गए हैं, मजाल है उनके दांत में फिर दर्द हुआ हो।
3: लेकिन लहसुन तो कोई बुरी चीज नहीं है।
4: अरे तो इस दवाई को भी आजमाने में क्या हर्ज है?
3: अरे कमाल है, देख लेना बहन, कहीं 19-20 ना हो जाए। हाँ
4: मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? फिर डॉक्टर की दी हुई दवा है, ऐसी वैसी तो होगी नहीं।
0: लड़ने की क्या जरूरत है, लाओ मैं ये भी उनके मुंह में अभी रखे देती हूँ।
3: अरे कमाल है, अच्छा मैं तो चलती हूँ।
4: मैं भी चलती हूँ।
0: ये तो हमारी किस्मत है कि इतना अच्छा पड़ोस मिला है।
4: अरे मेहरबानी कैसी बहन, दुख सुख में पड़ोस को ही तो काम आना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
3: अरे आप भी जाओ मीतू अब।
4: हाँ बहन रमा चलो अब।
1: हाय राम रे, ओ ओए राम रे,
5: दुखी राम जी।
1: कौन है भैया?
5: दुखी राम मा,
1: आओ भाई हिदायती राम आओ।
5: असलाम खुशी राम मा, की हाल है भाई? यार एक ही है, मुंह लटका के बैठा है।
1: अरे मेरे दांत में दर्द हो रहा भैया।
5: और की होया तेनु दर्द?
1: हाँ दांत में दर्द है।
5: और कुछ दसेंगा भैया? हाय हाय हाय लगा रहे।
0: ये कैसे बताएं भाई साहब, इनके दांत में बेहद दर्द है, सब इलाज करके देख लिया, कुछ बनता ही नहीं।
5: बस कमाल है भाई जी। जरा जी बात दे बच्चे, इतना हंगामा खड़ा कर लिया।
0: जरा सी बात? अरे भाई साहब सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, जिसने जैसी दवा बताई वैसा ही किया,
5: मगर फायदा नहीं होया। हो ही कितना सकता है जाए जी, कुछ नुस्खे होंगे ना नुस्खे, जो सिर्फ किसी किसी ने मालूम होंगे ने। ओए ठहर जा ठहर जा, ओए ओए गल सुन, ओए दुखी रामा ठहर जा, उन्हीं दिन आ ले रगड़ जन्ना अच्छा ले ले ले ले, ओ तेरी किस्मत चंगी है, असि इत्थे आ गए हैं। हां
0: तंबाकू?
5: हां हां,
1: मगर इससे क्या होगा?
5: ओए पूछ के ये देना, होएगा की नहीं? और तू भी यार अजीब आदमी है, वेखो देख दांत च दर्द उदो हुंदा है जो दांत च कीड़ा लगा होवे।
1: कीड़ा?
5: हां कीड़ा, कीड़ा भी उदो लगदा है जद मिठा खादा होवे। ओ तू जरूर मिठा खादा होना है।
1: हां यार कल मैंने लड्डू खाया था।
0: मगर तुमने लड्डू कब खाया जी?
1: अरे भगवान, दफ्तर में कांता ने अपनी शादी की खुशी में बांटे थे।
5: ए तम्बाकू दांत थल्ले रख ले, ते कीड़ा मर जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा।
1: मगर
5: छोड़ो, और मुंह के अंदर ना जान दे थी। शाबाश,
0: दर्द ठीक हो जाएगा जी।
1: मुझे
5: दाजी,
1: मुझे तो
5: 5 मिनट लगेंगे,
1: चक्कर आ रहा है।
5: चक्कर आएगा, ओए दंद दे कीड़े नु भी चक्कर आएगा, ओ नटन ले बाहर आएगा। ओए ओए ओए ओ गासुन, ओ दुखी रामा, ओ

0: ¿De quién me la haré?
1: अब चलो सब हॉस्पिटल चैन से तो सो गए। हाँ।

0: हवा महल में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

देवदास फिल्म का गीत आपने सुना, के कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में नुसरत बद्र के बोल थे, इस्माइल दरबार का संगीत था।

जिस देश में गंगा रहता है, स्वर्ण का गीता सुखविंदर सिंह और श्रद्धा साधना सरगम की आवाजों में देव कोहली के बोल थे।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिव और मुश्तबा अजीज नाजा की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश चंदन शिव के बोल थे। शैल प्रतेश, नितिन शंकर की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों

0: देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान

0: अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल

0: और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके

पत्थर की सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। फिल्म जंगली, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: आपकी परछाइयां इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, राजा मेहदेली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप आरोप। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

राजा जानी फिल्म का गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

धरती कहे पुकार के आप सुन रहे थे इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: एन दत्ता की तर्ज थी सह लुधियानवी का लिखाई गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार। मैं

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर,
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज के फनकार।

0: रहते हैं
1: वो पास रहें या दूर रहें उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है
0: मिले नादा,
1: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं।

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूँगा।

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी, सुनिए।
1: सन 52 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे

कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पेक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी। उठो उठो, देखो बाहर कौन आया है। ग्रेगरी पेक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर।

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उन

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

मेहरबान है जवानी और कुछ उम्र का भी तकाजा है। हमारी मदहोशी के बारे में जमाने का तो यही अंदाजा है।

इसमें नजरों ने देखते ही बांध लिया है दिल को, नैनों की जादूगरी का क्या कहना। आंखों में सुरूर, लबों पे मुस्कान, यही है पहचान दिलबर की, इस हसीन शख्सियत का क्या कहना।

0: बेरुखी का आलम है, इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा, गुलों पे बहार आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।
1: ये कली जब

ना रहा वो गुलशन, अब वो हवा भी तो नहीं है। समा गई है कायनात इस दिल में, हमारी ये दास्तां भी तो नहीं है।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी समाचार का रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की।

0: away at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM Sun City चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। हमारी आज की यह सभा अब समाप्त होती है। कल सुबह आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।